नमस्कार। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते ई आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा FM रेनबो चैनल है। अज शनिवार है। शक संवंत 1948 दे आषाढ़ महीने दी 6 तारीख तद अनुसार ईसवी सन 2026 दे जून महीने दी 27 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साडी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे श्रोतियों का निघा स्वागत करता है।

जोग बनिया तेरा कीर्तन गाही, जो सानू याद दिलाउंदा है कि परमात्मा दी महिमा गाउण दा यह मौका किन्ना भागा वाला है, यानी सवेर दा मौका। सवेर नू जो तो परमात्मा नू याद कीता जांदा है तां सिद्धा परमात्मा तुहाडी गल सुनदा है।

अजय सी सुन रहे सी रूह नूं रसायण देण वाला यह पवित्र शब्द गुण गावा नित तेरे जिसने सवेर दे इस माहौल नूं होर भी ज़्यादा रूहानी बना दिता है। सचमुच जदों असी नित उस परमात्मा दे गुण गाउंदे हाँ तो जिंदगी दी हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो चलो अगला शब्द सुनते हैं।

बंदिया, पाप एक ऐसी वस्तु है जो खरीदन विच ते बड़ी सस्ती लगती है, पर इस दियां किश्तां जेड़ियां ने उतारदे उतारदे जन्मां दे जन्म गुजर जांदे ने। इसलिए परमात्मा दे यकीन रखना चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, चंगे राह ते चलना चाहिए।

FM बैन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। हुणे तुसी सर्वण कीता भगती रस दा प्रोग्राम वंदना ते हुण वेला हो गया है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे संबंधित गबन मामले विच 8 लोगों नू गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत मुहिम जन भागीदारी तो प्रेरित एक लोक लहर बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विच नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर दी 10वीं उच्च पदरी मीटिंग विच बोलदियां नशिया खिलाफ एकजुट जंग दा सद्दा दित्ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिणी कोरिया दे विदेश मंत्री नाल दुवल्ले संबंधां नू मजबूत करन लई व्यापक विचार वटांदरा कीता है। पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम डिवाइस ने पिछले एक साल दौरान साइबर धोखाधड़ी नाल जुड़े 63,749 बैंक खातियां ते रोक ला दिती है। सूबे भर च जलंधर कपूरथला ते होशियारपुर धोखाधड़ी तो सब तो वध प्रभावित जिले ने।

तो चलो जी, खम्मा घनी यानी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जलंधर। कल दी फिकर नू कल ते ही रहन दियो, आज दे दिन नू मुस्कान नाल सजन दियो। जो रात भर दिल नू परेशान करता रहा, आज उसनू पिछे छड़ के अपने दिल नू अग्गे वदन दियो। दोस्तों, कई बारी ना असी रात नू असी इन्नी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते करते अपनी एनर्जी खत्म कर लेंदे हाँ। प्यार प्यार प्यार प्यार दियां गल्लां तो असी भुल ही जांदे हाँ। पर याद रखो, रात सिर्फ सोचन लई हुंदी है, फैसला करन लई नहीं हुंदी। अज सवेरे जदों तुसी उठ गए हो तां कल दियां गल्लां, डर ते ओवर थिंकिंग सब कुछ पिछे छड्ड दिओ। अपने आप ते भरोसा रखो, क्योंकि सैल्फ स्टीम दा मतलब है अपनी कीमत नू पहचानना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ते आज दे दिन विच अपना एक टारगेट रखो, जो भी काम करो पूरे दिल पूरी मेहनत ते पूरे कॉन्फिडेंस दे नाल रखो करो। यानी याद रखो, जदों तुसी खुद ते यकीन करना शुरू कर देने हो ना, उदों दुनिया भी तुहाडे ते यकीन करना शुरू कर देंदी है। हैव अ कॉन्फिडेंट डे ते हमेशा मुस्कुराउंदे रहो। तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो गुड मॉर्निंग जलंधर।

या रेड लाइट जंप करना ये सिर्फ चलान ही नहीं किसी की जिंदगी भी खतरे में पा सकता है। सो रोड सेफ्टी रूल तुहानू परेशान करन लई नहीं है मेरे दोस्तों, तुहानू सुरक्षित घर पहुँचाने दे लई है। तो जेकर कोई एमरजेंसी हो जाती है तो तुसी 112 ते तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नाल संपर्क भी कर सकते हो। तो जलंधर पुलिस कंट्रोल रूम भी 112 राही ही उपलब्ध हो जाता है। सो रफ्तार नाल नहीं समझदारी नाल मंजिल जिहड़ी है तुसी अपनी तय करो। हैलमेट तुहाडे सादी हिफाजत करता है ते ट्रैफिक रूल तुहाडी जिंदगी दी ते असी हिफाजत करते हाँ तुहाडे मूड दी। ते मूड जिहड़ा है अज थोड़ा जिहा मस्ताना है। तो चलो जी अगला गीत सुनते हाँ गुड मॉर्निंग विशाल ददलानी की आवाज़ दे विच। सो एक बार फिर गुड मॉर्निंग जलंधर, जुड़े हो अपनी दोस्त महक दे नाल, ट्यून कीता जी 102.7 ते 103.7 मेगा 6 मेगा हर्ट्ज़ से।

एनर्जेटिक सॉन्ग सुन के तो मैं भी उठ जावांगी। आई होप तुसी तो उठ ही गए होवोगे क्योंकि अलार्म ने तो उठाना है नहीं। दोस्तों असी जलंधर दे विच रहिंदे आ, साडे प्रोग्राम दा नाम भी गुड मॉर्निंग जलंधर है। तो प्रोग्राम दा नाम गुड मॉर्निंग जलंधर है तां मॉर्निंग तां हो गई है, गुड तुसी बनाना है। ते नाल ही इनफॉर्मेशन जेकर जलंधर बारे ना होवे तां फिर प्रोग्राम थोड़ा जिहा अधूरा अधूरा लगता है ना। तां अज दा सोहणा जिहड़ा दिन है, सोहणी सवेर है ते

0: रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरेले पॉकेट। अरे वारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: You like me and I like you too.

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी।

तैयारियां तेज हो गई ने। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सरपंच नूं पिंडां दे समुचे विकास लई सियासत तों उपर उठण अते तनदेही नाल काम करन लई कहा है। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी अते देश विरोधी गतिविधियां विच शामिल होण ते इल्जाम विच तीन व्यक्तियां नूं गिरफ्तार कीता है। मर्दा दे FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट विच भारत ने बीती रात पाकिस्तान नूं 7-1 नाल हरा दिता है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ।

0: ए सन एफ एम न्यूज हेडलाइंस।
1: रेनबो एफएम, रेनबो एफएम, रेनबो एफएम, रेनबो एफएम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो सोमवार तक सैशेल्स के दौरे उत्ते होंगे। वो सैशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के 50 साल समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत करनगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर तो पैदा ताप की वरतों करने वाला दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। वेनेजुएला विच आए भयानक भूचाल विच मरण वालों की गिनती 920 हो गई है। भारत ने सहायता लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान मामले में गिरफ्तार किए गए सारे 8 मुलजमान 29 जून तक अदालती हिरासत में भेज दिता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते 96,30,00,000 डालर वध के 632 अरब डालर तो वध हो गया है। 3 जुलाई तो शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा लई तैयारियां तेज हो गई ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरपंचां नूं पिंडां दे समुचे विकास लई सियासत तो उपर उठण अते तनदेही नाल काम करन लई कहा है। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी अते देश विरोधी गतिविधियां विच शामिल होने के इल्जाम विच 3 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया है। मर्दा दे FIH प्रो लीग हाकी टूरनामेंट विच भारत ने बीती रात पाकिस्तान नूं 7-1 नाल हरा दिता है। ये सन FM न्यूज हेडलाइंस।
1: बूट पॉलिश तेल मालिश एक पेन दे नाल 4 पेन फ्री
2: ताजी करी झल्ली 5 रुपए
3: वाजो फिर राम मंडी तलन उच्चा कोडली मुसाफर मेली रहा जटा बड़ा पड़त लेता गलाया फ्लोर अपना समराड़ी वाले वाजो भैन जी समान लदो जी
4: पर वीरे बस चलनी कदों मेरे नाल गल्ली पैन नु भी कोई ना
5: हो फिकर ना करो जी सफर ते चलयो ते बस अपना साथी बना लो FM रेनबो नु टाइम के दा लंग जु पता भी ना चलू हियर वी गो विद FM रेनबो
0: FM एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसी सुणोगे प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

0: दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो चुका है पंजाबी तड़का ते पंजाबी तड़का दे विच गाणियां दा तड़का लगना गल्लां दा तड़का लगना गल्लां ते गीतां दा तड़का लगना ते तड़का लाउंदे लाउंदे मैनूं लगदा साडे नाल इक कालर जुड़ चुके आ गल करदे आ तड़का लाउण लई कौन पहुंचे ने हैलो जी
1: सत श्री अकाल
2: हाँ मैं कश्मीर सोना मार्ग से आपका रेगुलर श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: वाह जी वाह लो जी पहली कॉल लकी कॉलर कश्मीर तो ठंडिया वादिया तो आए ने बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा एफएम दे बेड़े विच।
2: शुक्रिया शुक्रिया सर।
0: लतीफ जी की हाल चाल है वादिया का किवें है इत्थे तो गर्मी बड़ी पै रही है तुहाडे ठंड होनी है ना
2: ये तो यहाँ पे थोड़ा हल्की फुल्की ठंड है और गर्मी भी बढ़ गई है अब जुलाई का महीने आने वाले अब अमरनाथ का सीजन भी आ चुका है
0: जी 3 जुलाई तो शुरू हो रही है यात्रा।
2: हाँ अमरनाथ सीजन ये हमारे जिले में पड़ता है जिला गांधरबल।
0: अच्छा गांधरबल ठीक है जी है। ते इत जी बर्फबारी है ओ जो सियाल आ जो
2: वो तो खत्म हो चुके है सर।
0: अच्छा जी
2: हाँ वो खत्म अब मोटे अलग पहाड़ों पे थोड़ा थोड़ा बर्फ बच जगह है और ये ग्लेशियर वगैरह वहाँ पे बर्फबारी है।
0: ओके ओके ठीक है जी ते देखो हाँ। तुसी कॉल की थी मेनू ठंडिया ठंडिया वादियां दा ठंडा ठंडा नजारा आ रहा ते प्रोग्राम लगातार सुनते हो एफएम दे।
2: हाँ मैं सुनता हूँ लगातार और सोनू अंकल जी है ना
0: जी
2: वो जो हारमोनियम बनाते है
0: भगत सिंह चौंकवाल।
2: हाँ वो भी मेरे साथ सुनता है मैं उसके भी फोन करता हूँ।
0: अच्छा जी ठीक है जी ठीक। अच्छा तुसी जलंधर आए हुए हो जलंधर दी गल कर रहे हो ना तुसी।
2: हाँ हाँ जलंधर
0: जलंधर ठीक है जी। ए सोनू जी दा नाम लिया तुसी हारमोनियम बनाउंदे ने किथे बनाउंदे ने
2: वो उती वो ही वहीं बनाते है हारमोनियम बनाते है सोनू अंकल।
0: अच्छा ते म्यूजिक दा तानू शौक भी है म्यूजिक दा काम सिखिया भी होया है मतलब के हारमोनियम बनाउणे है ना।
2: नहीं मैंने नहीं बनाया वो तो बनाता है।
0: अच्छा जी
2: बनाता है
0: ठीक है जी। तो जलंधर आए जलंधर घूमया भी है कि बस इसे काम लिए आए से।
2: नहीं अमृतसर अमृतसर में पहले आ चुका हूँ डॉक्टर के पास।
0: अच्छा जी अमृतसर तो फिर तो तुसी गोल्डन टेंपल श्री दरबार साहब दे भी दर्शन किए होने हैं
2: वहां पे आ चुका मैं डॉक्टर डॉक्टर जलजीत सिंह।

0: ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੰਡੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
1: हाँ
0: ਤੇ
1: सही बात, वहाँ जलंधर में भी बहुत गर्मी होगा।
0: जी गर्मी, हाँ पंजाब में तो अभी गर्मी है, अभी बरसात शुरू हो जाएगी
1: हाँ सही बात,
0: तो उसके
1: हमने
0: बाद
1: गाना सुना है हरजीत सिंह की आवाज में, कोई भी
0: किन की आवाज में,
1: हरभजन,
0: हाँ हरभजन सिंह, हरभजन मान।
1: हाँ हरभजन मान।
0: लो जी तुहानूं गाणा बड़ा सोहणा गावा सुणावांगे उहनां दा, माहियां मैं लोंग गवाईआं। ते बहुत बहुत शुक्रिया
1: हाँ ये
0: तुसीं
1: बात,
0: FM दे बेड़े विच आए ते सुणदे रहना, ते अपने नाल होरां नूं वी कहणा कि पंजाबी म्यूजिक जिहड़ा है उहदा आनंद लैणा, पंजाबी म्यूजिक दे नाल नाल होर वी हिंदी फिल्मी गीतां दे आधार ते जिहड़ा प्रोग्राम होणी तुसीं सुण के हटे हो, हमेशा ये
1: हाँ
0: मिलना है, जिहड़ा आनंद मिलना है वो FM रेनबो ते ही मिलना।
1: हाँ सही बात,
0: बहुत बहुत शुक्रिया साडे दोस्त दा जो
1: शुक्रिया
0: कश्मीर
1: शुक्रिया
0: तो
1: साहब।
0: साडे नाल जुड़े ने। ते देखो दोस्तों दिलां दियां तारां कित्थों कित्थे जुड़ जांदियां ने, तुसीं अमेजिन करो कि किन्ना

0: हाँ हेलो जी,
1: हेलो बेटे, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: मैं प्रवीण बोल रहा, गोपाल नगर जलंधर से।
0: प्रवीण जी, की हाल चाल ने?
1: हाल भी बढ़िया, चाल भी बढ़िया जी।
0: वाह जी वाह, चाल दुरुस्त ते हाल तो नहीं सुस्त?
1: नहीं, बिल्कुल, शुक्रिया परमात्मा का जी, सानू उन्हें जिंदगी दिती है,
0: जी
1: शुक्रिया करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी, हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिदा है। FM वेड़े दे विच कॉल लगी है ते अज गीत केड़ा
1: देखो
0: सुनोगे?
1: जी, मैं लाइन सुनाना चाहना भाई।
0: जरूर जरूर,
1: देखो, माँ प्यो का दर्जा परमात्मा के बराबर है,
0: बिल्कुल जी।
1: ते माँ प्यो सानू किन्ने औखे होके पालदे आ, ते पर वो महसूस नहीं होंदे, जिन्ने मर्जी होवे दुख तकलीफां।
0: जी
1: माँ देख लो, मतलब के बच्चा बाथरूम करता है ना छोटा, ते ए सुके कपड़े उन्हें पाउंदी, गिल्ले ते आप ही पै जांदी है,
0: बिल्कुल सही
1: ते
0: गल है
1: अगो बाप वो पूरी जिम्मेदारी लैंदा बेटे दी।
0: जी।
1: पर असीं ऐसे करते कि माँ प्यो नूं अनाथ आश्रम छड्डे आउंदे,
0: बड़ी
1: इधरों
0: गल है
1: माफ
0: जी, बिल्कुल
1: इधरों फिर परमात्मा भी नाराज हो जाता है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: कहते तू मेरी कदर नहीं की, परमात्मा की कदर करेगा जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सोहना तुसीं दस्या है, सच है जिंदगी दा। खासकर अजोके समें दे विच जिहड़ा ये बहुत ज़्यादा देखण नूं मिल रहा है, जिथे साडे अर्गे जां तुहाडे अर्गे लोक उन्हां दा दिल पसीज जांदा है इस गल नूं लै के, है ना,
1: हाँ जी,
0: जिहड़े
1: देखो
0: मापिआं ने
1: माँ प्यो
0: तुहानूं
1: सानू इज्जत
0: पालिया।
1: किन्नी करते, सानू भी करनी चाहिए। मतलब माँ प्यो बड़े कर्मां नाल मिलते आ।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, जिन्हां दे नहीं हन जां जिन्हां दा विछोड़ा हो गया उहनां नूं पुछिया जावे कि मापे की
1: वो तो
0: हुंदे ने।
1: देखो जी, बहुत दुखी आ भी ये माँ प्यो, बाकी किसी ने इत्थे रहना नहीं हैगा,
0: बिल्कुल
1: रहना परमात्मा दा नाम ही है, जिन्हें आना उन्हें जाना भी जरूर है,
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: ये सच है।
0: बहुत सोहनी तुसी गल कीती
1: असीं
0: है
1: एवें
0: जी।
1: पैसे जमा कर, अहीं पैसे करी जावांगे, 10-10 कोठियां ले लेंगे, नाल साडे शरीर ने जाना पैसा की जाऊगा। ठीक
0: वाह
1: है, पैसा
0: बिल्कुल
1: उन्ना
0: सही
1: कोई
0: गया
1: चाहिदा आ
0: जी
1: जिन्ना मतलब कि आपां नूं जरूरतमंद है।
0: जी जी जी ते प्रवीण जी, गल्लां सोहनियां हो गईआं, सोहणा गीत दस दिओ, केड़ा सुनना अज?
1: ये गाना तुसीं सुना दो, बंदा बन जा दिला दे जानिया, पर मेरी आवाज पछाण लियो, कोई आए ना दूजा।
0: जरूर जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी FM बेड़े च आए हो। तुसी
1: शुक्रिया जी।
0: लो जी, इन्होंने कहा है कि गीत सुना दियो, बंदा बन जा दिलां दे जानिया। वाकई बंदा बन जाना चाहिदा है दिलां दा जानिया, जे क्या है इहदा मतलब कि वो प्यार नाल कह रहे हैं, ते आपां नूं भी जिंदगी दे विच जे कोई तुहानूं ताड़दा है तो वो अपना ही हुंदा है। प्यार नाल जे कोई कहिंदा है बंदा बन जा, चाहे वो तुहाडा जीवन साथी है, चाहे तुहाडे माता पिता ने, चाहे तुहाडा वड्डा छोटा भैण भरा है, जे तुहानूं ताड़दा पिया है किसी काम तो लै के, इहदा मतलब है उहनूं तुहाडी फिक्र है, ते वो फिक्र नूं मद्देनज़र रखदे हुए हमेशा कहने दे विच रहना है ते जिंदगी दा आनंद माणना है। ते FM रेनबो दे उत्ते गाणिआं दा आनंद माण रहे हो, ते उहनां आनंदां दे विच इक सोहणा जिहा आनंद मन लईए गीत, ते देखदे हां अगले कालर किहड़े जुड़े ਦੇ ਆ।

0: मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जेड़ा आ वो एक स्किल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल
1: जी
0: सब्जेक्ट है ना। इनू एदे पहला कॉन्सेप्ट नू चंगी तरह समझिया जाना चाहिदा आ।
1: जी
0: रोजाना जिंदगी दे विच जो अपा असल जिंदगी दे विच इनू यूज करदे, बच्चियां नू ओदे बारे दसना जरूरी आ।
1: जी
0: एदे कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर उदाहरणा लैके अपनी असल जिंदगी दे विचों फिर उनां दी प्रैक्टिस करवानी सब तो जरूरी है। जिस दिन उन्होंने नाल ना उन्हें अंदरों एक डर है वो निकल जाएगा।
1: जी ते गणित नूं जिद्दां तुसीं कहिंदे कि आपां हुण आसान बनाउणा, रुचि वाला बनाउणा, इंटरस्ट वाला बनाउणा, ओहदे बनाउण दे की तरीके अपनाउणे चाहीदे सानूं?
0: एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मैथ्स, गेम्स,
1: जी
0: स्मार्ट बोर्ड्स, बच्चों नूं मॉडल्स, लाइफ रियल लाइफ जिहड़ी एग्जाम्पल्स आ वो बच्चों नूं देनियां चाहीदियां आ तां जो बच्चों का इंटरस्ट जिहड़ा आ वो क्रिएट हो सके।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। ते जेकर गल कीती जावे जेड़ा मैथ है, गणित है, हिसाब है, ओहदे विच
0: हाँ
1: जेकर
0: जी,
1: तेज होना, ओहदे लई रोजाना अभ्यास जरूरी है? जेकर जरूरी है ते किन्ना के समा ओहदे लई देना चाहिदा है?
0: सर किसी भी काम करन नू कोई भी आपां सिखदे आ कुछ भी सिखदे आ ओहदे लई
1: जी
0: जेड़ा हैगा अभ्यास बहुत जरूरी आ।
1: बिल्कुल
0: मैथ जेड़ा आ ओह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ ओहदे
1: जी
0: लई तां अभ्यास जरूरी आ। प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करना,
1: जी
0: प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दी एबिलिटी साडे अंदर आंदी आ।
1: बिल्कुल
0: जे असीं उहनां नू सॉल्व करांगे तां प्रैक्टिस करन लई टाइम तां लगेगा ही,
1: बिल्कुल
0: ते ओहदे लई प्रैक्टिस रोज अगर 45 मिनट असीं क्लास दे विच बच्चे नू पढ़ाने आ तां
1: जी
0: बच्चा अगर 1 घंटा जाके 60 मिनट भी जाके बच्चा पढ़दा आ प्रैक्टिस करदा आ तो
1: जी
0: बहुत अच्छा वो मैथ दे विच बन सकदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ए छोटे बच्चे है जेड़े, उना नू पहाड़े नहीं जाते हुंदे, टेबल्स नहीं जाते हुंदे। हुण बच्चियां विच टेबल्स है जेड़े, पहाड़े है, ते बुनियादी जेड़ी गिनती मजबूत करनी, जिदा 1 to 100 ला लो, है ना, एक तो लैके 100 तक गिनती जेड़ी है ओनू कह लिए बच्चा जल्दी सीखे ते पक्के तौर ते सीखे। जिदा हुण असीं बचपन तो सीखे हुए आ ते अज भी असीं जेड़ा पहाड़ा, जिदा आपां कह लिए 7 × 5 = 35, है ना, ते
0: हाँ जी,
1: 17 × 34 इमीजिएटली बोल लैने आ। एदे लई की खास करना चाहिए कि सारे बच्चे इको जे तौर ते मजबूत होन, इको जिहा ओह उन्हां नूं याद रहन, पक्के तौर ते याद रहे, एदे लई की सुझाव दोंगे?
0: हाँ जी, तुहानूं याद आ शायद जो स्कूल च पढ़दे हुंदे सी एक बाल सभा लगदी हुंदी सी बच्चियां दी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना,
1: जी।
0: ते उहदे विच 2-4 बच्चे खड़े हो के पिछे उन्हां नूं पहाड़े बुलांदे सी, प्रैक्टिस करवांदे सी, अभ्यास करवांदे सी ना उस चीज दी। एक तां बच्चियां दा मनोरंजन हुंदा सी नाल उन्हां दा अभ्यास हुंदा सी जिहदे नाल बच्चे अज तक भी ओह चीजां भुल नहीं पाए हैगे। ओह
1: बिल्कुल
0: ही हो
1: बिल्कुल
0: जांदा ना
1: जी।
0: असल लाइफ जिंदगी दे विच अगर मनोरंजन दे नाल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कीती जाए ते उहदे नाल उहनां नूं बहुत अच्छा याद रहिंदा आ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सोहना तुसीं दस्या है। ते हुण इह मैनूं दस्सो, साडे सरताओं नूं वी दस्सो जिहड़े इस टाइम FM रेनबो दे नाल जुड़े हुए ने। देखो आम परीक्षावां दे विच जिहड़ा है ना बच्चा थोड़ा जिहा लीनियंट रहिंदा, है ना, जां टीचर वी चलो कोई गल नहीं, पर जदों बोर्ड दीआं परीक्षावां आउंदीआं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ, 8ਵੀਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ, 10ਵੀਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਾਲ ਚ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।
0: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ
1: ਜੀ,
0: ਹੈ ਨਾ।
1: ਜ਼ਰੂਰ
0: ਮੈਥ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
1: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

दोस्तों, आर टी बर्मन ने अपना म्यूजिक दा सफ़र एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1961 विच आई फिल्म छोटे नवाब तो किया।

वेलकम बैक जी। प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम के बच्चे पहली शायरी साढ़े को पहुँचती हो चुकी है जी। भेजन वाले साढ़े दोस्त ने जी पाली प्याला जी हुशियारपुर तो लिख रहे हैं कि मिल के विछड़ना तो इस दुनिया का दस्तूर है, मिल के विछड़ना तो इस दुनिया का दस्तूर है। कोई नेड़े आके टुटदा है, कोई हो के भी दूर है, कि वक्त की खेड अगे हर बंदा इत्थे मजबूर है। जो हसदा सी कदे अज हंझुआ लई मशहूर है, अज हंझुआ लई मशहूर है। बहुत बहुत शुक्रिया पाली प्याला जी अपनी शायरी इस प्रोग्राम दे विच भेजन लई, और मैं लगता है शायरी घट दिल दे हालात ज़्यादा ने। थैंक यू सो मच। अगली शायरी जी गगनप्रीत कौर टांडा तो लिख के साढ़े तक पहुँचती कर रहे ने। कहंदे कि चाहने वाले हज़ार है मेरे, पर ये दिल तुझ पे ही मरता है। तेरे एहसास का ही तो ये रिश्ता है जो मुझे मुकम्मल करता है। मैनूं लगता जी दुनिया के उत्ते ना मिठे बोल जड़े होंदे ने ना, वो इदां दे मिठे होंदे ने कि हर एक नूं अपना बना लैंदे ने। ते बस उही बोल ने जो साढ़े दोस्त साढ़े तक पहुँचाउंदे ने, भावें वो किसी दुख के जरिए होंदे ने, भावें खुशी के जरिए होंदे ने, भावें चाहत के जरिए होंदे ने, भावें राहत के जरिए होंदे ने, पर बोल जिवें दे भी होंदे ने जेकर उन्हां दे विच मिठास है तां हर इंसान अपना बनी जांदा है। जिवें तुहानूं अपना बनाउण दे लई अगले ट्रैक दे राहीं आ रहे ने जी सज्जन आदि।

प्रोग्राम चल रहा जी दिल आज शायर है ते अगली शायरी साढ़े तक भेजी है साढ़े दोस्त बलविंदर सरा पिंड मौरजंड से कहा हनुमानगढ़ तो कि तेरी अदाओं का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सर हो भी नहीं सकता जेकर तुसी शुरुआत ही लिख देता ना कि अदावां इन्नी सोहनिया कि तेरी अदाओं का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब मेरी आँखों में तेरे सिवा कोई ख्वाब नहीं है। तुम मत पूछ के कितनी मोहब्बत है मुझे तुमसे, इतना कि जाना मेरी मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं है। तेरी अदाओं का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बलविंदर जी बहुत ही कैंट शायरी और सचमुच विच तुहाडी इस शायरी दा साडे कोल भी कोई जवाब नहीं हैगा जी, और बहुत ही बेहतरीन है ते आला दर्जे दी शायरी तुसी साडे तक अज सांझी कीती है जी। थैंक यू सो मच। मैं कहा जी बहुत ही प्यारी प्यारी शायरी साढ़े तक आ रही है तो कुछ यही ही शायरी मतलब मिलती जुलती शायरी कुलविंदर टेलर जी ने पिंड कंदोला नेड़े आदमपुर तो साढ़े तक पहुँचती की है। कहें कि तेरे वाइदे तेरे वादे कि तेरे प्यार दी मोहताज नहीं, ये कहानी किसे किरदार दी मोहताज नहीं। लोग होठां ते सजाए हुए फिरदे ने कि मेरी शोहरत किसे अखबार दी मोहताज नहीं, मेरी शोहरत किसे अखबार दी मोहताज नहीं।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा जी दिल आज शायर है बने हुए हो अपने दोस्त बेपन सुमन दे नाल ते मेरा एक खास चौन वाला वैसे तो सारे खास ने जिन्हें भी ने साडे दोस्त लेकिन एक खास ने जी वो मैसेज करते जरूर ने लेकिन जो मैं उन्होंने मैसेज पढ़न लगता ना तो वो डिलीट कर देंगे ने साडा ये राबता ना पिछले काफ़ी जो मैं ड्यूटीज़ कर रहा रेडियो से तो उदों तो साडा बनया होया जी तो दोस्त ने अपना कह सकते हैं कर्तव्य या ड्यूटी फर्ज निभा दिता है मैसेज भेज के डिलीट करके तो मैं इस बार फिर पढ़ता पढ़ता रह गया। अगली बार इदा करेंगे इन्हों का ना नंबर तो इन्हों का मैसेज पहले ही आप फाइंड आउट कर लेना तो फिर इन्हों का मैसेज आप पढ़ा। खैर जी अगे वादे हैं साढ़े को अगला मैसेज आन पहुँचया है राम स्वरूप अरोड़ा जी चौंक छेलियाँ सुल्तानपुर लोधी तो की लिख रहे ने लिख रहे ने बहुत ही ज़्यादा लिख रहे ने जी। खैर अपने हाथों के नाल और कोरे कागज़ के उपर लिखा कि हादसों के शहर में फिरता है जो हंसता हुआ क्या खबर अंदर से है वो किस कदर टूटा हुआ कि सूरत बदल गई है तो हैरत ना कीजिए हम हादसों के शहर में रहते हैं दोस्तों। ये मैं लगता इन्होंने आप लिखा सी लेकिन अगली जो इन्होंने शायरी दिया चंद लाइना साढ़े वास्ते भेजिया वो अहमद फराज साहब की कलम तोकरिया हुई ने कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। सो इन्होंने जेकर ये गज़ल सानू याद करवाई दिती है तो फिर मैनू लगता सानू सुन भी लेनी चाहिए है जी। सो आओ जी सुनते हैं रंजिश ही सही।

वेलकम बैक जी, एफएम बैंड 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर, 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर, न्यूज ऑन AIR दे जरिए दोस्त इस वेले जुड़े हुए ने प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच। और इस प्रोग्राम दे विच अगली शायरी साढ़े तक भेजी है जी साढ़े अजीज दोस्त उदय चंद्र जी ने, प्यार भरी प्यार नाल भिजी हुई सत श्री अकाल सानू भेज रहे ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और लिख रहे ने कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आँखों से निकल सकते थे, कि तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से पत्थर भी पिघल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, हाथ से इतने ज्यादा है वतन में अपने, खून से छप के भी अखबार निकल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया उदय चंद्र जी, अपनी शायरी साढ़े नाल तुहाडे अपने खास प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच सांझी करन लई। सो दोस्तों, जेकर चाहुंदे हो तुहाडी वी शायरी नूं इस प्रोग्राम दे विच शामिल कीता जावे तां नंबर है जी 9855101027, यानी कि 9855101027। आओ जी सुनदे इस प्रोग्राम दा अगला ट्रैक, हरिहरन जी की आवाज़ गाई हुई एक खूबसूरत गज़ल जो कि हालात नूं मद्देनज़र रख के बनाई गई है।

हालत मेरी अब ये हो गई है। सुन रहे सी गजल तुसी हरिहरन जी दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच साडे अगले दोस्त दा मैसेज आन पहुंचा जी और नाल उन्होंने शायरी भी अर्ज की है। साडे दोस्त लिख रहे ने

धड़कने भी अब बेताब होने लगी है, अब आ भी जा, तेरे बिना शामें उदास होने लगी है, अब आ भी जा, बहुत तड़पा लिया इन यादों ने मुझे ए सनम, मुद्दतों बाद ही सही तेरी मेरी वो शाम होने लगी है, अब आ भी जा, धड़कने अब बेताब होने लगी है, सनम अब आ भी जा, और तेरे बिना शामें उदास होने लगी है, अब आ भी जा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए, अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का अंक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं एफएम रेनबो 102.6 पर। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे और आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हम यहां करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। पर आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, इसमें कोशिश करते हैं कि इसमें आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं और हमारी कोशिश होती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। आज हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी से गहरा जुड़ा जरूर है। और साथ ही साथ सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, तभी हम उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। तो विषय सुन लीजिए, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी दो रेडियो डॉक्टर्स, और दोनों का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन बधाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। नमस्कार मैम, स्वागत।
1: धन्यवाद शालिनी जी, नमस्कार श्रोताओं।
0: और हमारे साथ हमारी दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर स्मृति सिंह, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति हमारे स्टूडियो में आपका।
2: थैंक यू, नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: श्रोताओं से पुनः एक बार ये रिक्वेस्ट करें कि आपको इस कार्यक्रम को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने मन की बात, यानी आपको जो जो समस्याएं इससे रिलेटेड आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनको हमारे साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास सॉल्यूशंस हैं और वो आपको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान पूरी कोशिश करेंगे 4 बजे तक देने की। तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुमन बधाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो ये बताइए पीएमआर डिपार्टमेंट क्या है और ये क्या कार्य करता है?
1: पीएमआर डिपार्टमेंट, फिजियाट्री भी बोलते हैं, पुनर्वास, ये शुरुआती दौर में तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, दर्द, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इनके इलाज में ये सहायता करते थे। इस समय ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के किसी भी प्रकार या उसके बाद उसको कैसे समाज में पुनर्स्थापित करना है, चाहे वो उनकी वोकेशनल नीड हो या उनको वापस मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में वापस रीइंस्टेट करने का कार्य है, मुख्यतः लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसके बारे में ये हर तरह की कंडीशंस को ये कार्य करते हैं।
0: जी, तो बहुत कुछ आता होगा आपके इस जो विभाग के अंतर्गत, जिस तरह की भी आप बात कह रहे हैं, लोकोमोटर डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हो सकते हैं और बहुत कारणों से हो सकते हैं, तो उन कारणों की बात भी हम जरूर करेंगे कार्यक्रम में। पर डॉक्टर स्मृति, आपके हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर?
2: इसको हम दो तरीके से बांट, सबसे पहले ऑफकोर्स जो जन्म लेता है बच्चा वो डिफरेंटली एबल होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी उसमें भी होते हैं, लेकिन डिफरेंटली एबल कैटेगरी जन्म से, लिंग से, इन सब चीजों से डिसाइड नहीं होती है, ये एज बैरियर भी नहीं होती है, किसी एज में भी किसी को भी हो सकती है, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है। और रीजन तो हम सब जानते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंटली एबल लोग हो जाते हैं। हम इसको एक विजिबल कैटेगरी होती है जो आप देख पाते हो, लोकोमोटिव लाइक यू नो विजुअली चैलेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी नॉन विजुअल कैटेगरी होती है जिसमें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे हीमोफीलिया हुआ, जैसे वो लोग जो सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो लोग जो डाउन सिंड्रोम है, ये कैटेगरी हमें दिखती नहीं है, तो हम इस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं।
0: जी, पहले गीत सुनेंगे और फिर ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो हमारे देश में उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुमन बधाल और डॉक्टर स्मृति सिंह। तो हम बात कर रहे थे कि कौन डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉल करता है। डॉक्टर स्मृति ने हमें बताया कि बहुत तरीके से चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो बाय बर्थ हो चाहे बाय एक्सीडेंट हो। तो डॉक्टर सुमन ये बताएं कि कौन कौन से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या हर तरह की कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं या उसमें भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई कैटेगरीज होती हैं?
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफाई में कर रखा है जिसमें 21 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड हैं, दे कैन अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी। इनको जैसे कि मैडम ने भी बताया कि हीमोफीलिया, ब्लड डिसऑर्डर्स वाले हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, देन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टम को भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है, देन हियरिंग है, लो विजन, ब्लाइंडनेस है और भी इस तरह करके तकरीबन स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर जो कि आजकल लेटली इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दैट इज ऑल्सो सेरेब्रल पॉल्सी। इस तरह तकरीबन 21 कैटेगरीज हैं जो गैजेट में नोटिफाइड हैं, वो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, बेनिफिट्स के लिए अप्लाई।

0: कर सकते हैं।
1: तो ये अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये पहचान लिया कि आप उस कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन इसके लिए क्या स्पेशल कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई प्रोसीजर है, या कोई वेबसाइट है, कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है, या फिजिकली फॉर्म सबमिट करना होता है, ये थोड़ा सा बताएं।
0: जी बिल्कुल, इस समय हमारी भारत सरकार ने बिल्कुल विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं जिनको ये परेशानी है, तो वो सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है swablamban.com करके, जिसमें ये लोग अपने एरिया के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो जो नोटिफाइड हॉस्पिटल है उसमें 3 अस्पतालों की लिस्ट आ जाती है निकल के, जिसमें से चूज कर सकते हैं मरीज को जो पास पड़ता है या जो उनकी एरिया में आता है, तो उसके हिसाब से वो हॉस्पिटल उनके प्रिंट होके आ जाता है उनके एप्लीकेशन पे। फिर फिजिकली जाके उनको उस अस्पताल में उस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या जो भी वहाँ पे काउंटर होता है उनसे जाके मिलना पड़ता है, फिर वो आगे का प्रोसेस उनको समझाते हैं और हर जिस भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उस कंसर्न विभाग को वो उनको भेजते हैं।
1: जी, जो मेरा अगला प्रश्न था वो हमारे श्रोता ने यहाँ पूछ लिया है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। लिखने वाले हैं अमृत, कहाँ से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है, पर इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सुमन, मैं

0: सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है swablamban.com करके, जिसमें ये लोग अपने एरिया के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो जो नोटिफाइड हॉस्पिटल है उसमें 3 अस्पतालों की लिस्ट आ जाती है निकल के, जिसमें से चूज कर सकते हैं मरीज को जो पास पड़ता है या जो उनकी एरिया में आता है, तो उसके हिसाब से वो हॉस्पिटल उनके प्रिंट होके आ जाता है उनके एप्लीकेशन पे। फिर फिजिकली जाके उनको उस अस्पताल में उस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या जो भी वहाँ पे काउंटर होता है उनसे जाके मिलना पड़ता है, फिर वो आगे का प्रोसेस उनको समझाते हैं और हर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उस कंसर्न विभाग को वो उनको भेजते हैं।
1: जी, जो मेरा अगला प्रश्न था वो हमारे श्रोता ने यहाँ पूछ लिया है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। लिखने वाले हैं अमृत, कहाँ से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है, पर इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सुमन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं कि क्या आप प्रोवाइड करते हैं।
0: जी, मैं बिल्कुल इनको बताना चाहूंगी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए अमृतपाल जी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर हम कहें तो कई प्रकार के उपकरण अप्लायंसेस होते हैं, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस। सफदरजंग विभाग में पीएमआर विभाग में ऑर्थोसिस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट अभी हो गए हैं। प्रोस्थेसिस की कुछ नॉमिनल कॉस्ट है जो भारत सरकार के या जो ऑलरेडी नोटिफाइड लिस्ट है, कुछ एनजीओ या यूं कहें सीएसआर के अंतर्गत व्हीलचेयर भी जो डोनेशन बेसिस पे मरीजों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, ये सारी सुविधाएं जो हैं सफदरजंग विभाग इनको सुचारू रूप से देता है।
1: जी जी, और सीएसआर की आपने बात की तो एक प्रश्न हमारे पास आया है, अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि सीएसआर जो है हर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस पर आप क्या कहेंगे ये जानना चाहते हैं।
0: देखिए, सीएसआर जो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन भी होता है। मैं कहूंगी छोटी एनजीओ है, जैसे अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूं, किसी को हेल्प करना चाहूं, अगर मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड है तो आई कैन ऑल्सो हेल्प। और सीएसआर जैसे कॉर्पोरेट को एक मस्ट है उनको ये करना एक्टिविटी, तो दे हैव टू डू बाय वेरियस चैनल्स।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर स्मृति यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कितना लगता है आपको कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: अभी के आजकल के जमाने में सीएसआर 2% ऑफ द कंपनी इनकम, जो जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके अपने भी फाउंडेशंस हैं और वो कंपनी के थ्रू भी हर डिसेबल को, आप जैसे मैम ने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बताया, विजुअली चैलेंज के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कंप्यूटर हुआ और सॉफ्टवेयर्स हुए, स्मार्टफोन हुआ, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनसे हम मिलते हैं और बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की फैसिलिटी सीएसआर एक्टिविटी के अंदर देती हैं। तो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन सारी सारी बड़ी कंपनी में आप देखोगे
1: सीएसआर की एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात बोली डॉक्टर स्मृति। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, फोन लाइन पर है, आइए सुन लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में है, प्रश्न कर लें। जी
3: हाँ जी मैम, मैं मिथुन बात कर रहा हूँ गुजरात से।
1: हाँ जी,
3: मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं सरकार की क्या क्या योजना रहेगी जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए। मैम
1: जी, अभी ये बात हमें डॉक्टर सुमन बता रही थी, डॉक्टर बताएं इनको फिर से कि क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, यही जानना चाहते हैं।
3: जी
0: जी निखिल जी, देखिए सरकार की, क्योंकि वो पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है उसको हम एज ए होलिस्टिक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उसको कंसिडर करना चाहिए, तो हमें पहले डिसाइड करना चाहिए कि उसको चाहिए क्या, डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, उनकी ज़रूरतें कैसी हैं और किस अवस्था में जाके डिसेबिलिटी हुई है, उनकी एजुकेशनल नीड हो सकती हैं, उनकी वोकेशनल नीड हो सकती है, उनको एक यू कैन से कि एक डेडिकेटेड इनकम चाहिए अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वोकेशनल नीड हो सकती है, मॉनेटरी नीड्स हो सकती हैं, तो उस इंडिविजुअल को एज ए होलिस्टिकली आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के बाद उसके माध्यम से ये सारी उनका बेनिफिट जो है उसको पर्सन को मिल सकता है।
1: जी धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। और इस तरह के हमारे श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे रेडियो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमन हैं और डॉक्टर स्मृति हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम जो आज बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको दी जाती है सरकार द्वारा और एनजीओ द्वारा, वो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैम,
1: कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं अमृतपाल सिंह बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से।
1: जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं आज इस विषय पर?
2: हाँ मैम, जैसे मेरे एक नॉन है, उनकी एक आंख से बिल्कुल नहीं उन्हें दिखाई देता, तो इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर रहता है?
1: जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है डॉक्टर सुमैन का, कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, बताएं।
3: धन्यवाद अमृतपाल जी सवाल पूछने के लिए। आपने जैसे बताया कि वो विजुअली चैलेंज है या उनका
1: एक आंख से
3: उनका दिक्कत है,
2: तो, आंख से जीरो है।
3: हाँ, तो इसका एक पोर्टल है जो सरकार ने ई सुविधा दी है, स्वावलंबन.com करके, उसमें वहाँ उनको आधार

0: बेस्ड ये सिस्टम है ताकि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक यूनिफाइड डेटा सरकार को चाहिए जिससे कि सारी सुविधाएं उनको बेनिफिट जो है इस यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से उनको दी जाएं। तो पहले इनको रजिस्टर करना पड़ेगा स्वावलंबन.com पे, उसके बाद इनके आधार बेस के हिसाब से इनका जो एरिया है उसके आसपास इनको 3 अस्पताल प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 करके इनके लिस्ट में आ जाएगा। तो जो भी अस्पताल इनको डेजिग्नेट किया गया है उस पोर्टल के माध्यम से वो वहां जाके विजिट करें, कोऑर्डिनेट करें और वहां उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा।
1: ठीक है मैम,
2: तो बिल्कुल धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और आप जैसे और बहुत सारे श्रोता होंगे जो इस बारे में जानना चाहते होंगे, आपके माध्यम से, आपके प्रश्न के माध्यम से उनको भी जवाब मिल गया। हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है, नरेंद्र शर्मा जी हैं किस्तवाड़ जम्मू कश्मीर से, इन्होंने हमें अपने बेटे के बारे में लिखा है कि मेरा पुत्र है जिसकी उम्र 14 साल है और अभी मेरा बेटा सामान्य स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत है और वो जन्म से उसको हियरिंग वो इम्पेयर्ड है, 90% हियरिंग लॉस है। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या उसको सामान्य स्कूल में पढ़ने दिया जाए या उसको कोई स्पेशल स्कूल में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा लिखा है पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, समय की थोड़ी कमी है। ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की क्या इनको पढ़ाई कराई जा सकती है कि जिससे वो पैरों पर खड़ा हो सके और उनको आगे किसी और स्कूल में डाला जाए जिससे कि उनकी आगे की जो जर्नी हो पढ़ाई की भी और जॉब की वो इजी हो सके, इस तरह के कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या डॉक्टर स्मृति?
3: या सबसे पहले नरेंद्र जी, कोई घबराने की बात नहीं है और आपका बच्चा अभी सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है और मैं यही आपसे आशा रखूंगी कि उसकी आप सामान्य स्कूल में ही पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। थोड़े चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, आपके जम्मू एरिया में भी हैं काफी लोग हैं और वो हेल्प भी करते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात है आइडेंटिफाइड जॉब है जो विजुअली चैलेंज, हेयरिंग इम्पेयर्ड या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ लोग कर सकते हैं, तो उस तरीके के जॉब सरकार ने बताए हुए हैं और उनमें बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें HH के लिए सीट रिजर्व रहता है, तो उसमें आपका बच्चा सामान्य लोगों की तरह जॉब भी कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है और आप सामान्य स्कूल में ही अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी।
2: चलिए बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न किया है नरेश जी और आपको जवाब भी मिल गया डॉक्टर स्मृति की तरफ से। और हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो।
4: हेलो
2: जी, आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
4: वीपी सिंह बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली से।
2: जी वीपी सिंह जी, आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे आज इस विषय पर?
4: दो एक्सपर्ट हैं, दोनों से एक एक सवाल है।
2: हाँ जी बताएं।
4: जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है जो मैडम है उनसे सवाल ये है मेरा कि जो पहले से ही विजुअली चैलेंज पर्सन है और मेडिकल कार्ड भी है उसके पास, कंसेशन कार्ड होते हैं
2: जी,
4: रेलवे में फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, जो भी कार्ड बना रही है जो टिकट बुकिंग करने के लिए वो UID कार्ड होना जरूरी है, तो कहाँ से बन सकता है?
2: अभी मैडम ने बताया था UID कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें, आप शायद लेट जुड़े होंगे कार्यक्रम में।
0: UID कार्ड के लिए आपको स्वावलंबन.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये एक आधार बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपका आधार से और आपके फोन से लिंक्ड है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है आपके फोन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे आपको 3 अस्पताल की लिस्ट दी जाएगी, तो जिसमें से जो भी अस्पताल आपको बेस्ट सुटेबल लगता है आप वहाँ विजिट करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
2: चलिए धन्यवाद वीपी सिंह जी, आपका प्रश्न हम तक पूरा नहीं पहुँचा लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी,
5: मैं 80 साल उम्र है मेरी साहब।
2: जी नाम बता दें।
5: जगजीत सिंह है मेरा नाम।
2: अच्छा जी जगजीत सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: 218 में मेरी आंखों का इलाज हुआ था, मेरी रोशनी उस टाइम 20% थी, अब बिल्कुल कम हो गई है रोशनी। कोई हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से?
3: हाँ जी सर, 80 साल के लोगों को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, आप जिस एरिया में लोकेटेड हैं उसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो स्पेशल स्कूल के हैं या नॉन गवर्नमेंट NGOs के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, क्योंकि इट्स वेरी मतलब एज रिलेटेड डिसेबिलिटी तो आती है। अब जो 75 साल तक जी रहे थे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आंखों से, अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, एज सिंपल एज दिस, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है। तो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रन किया जाता है और उनको सुविधा दी जाती है जो मुफ्त में किया जाता है, तो आप जैसे लोगों के

0: ये भी सुविधा है।
1: इसको कैसे किया जा सकता है अवेल?
0: इसको अवेल करने के लिए आप जिस एरिया में हैं, उस एरिया के जो भी आपके आप पता करो कि उनके आपके एरिया में गवर्नमेंट या एनजीओ से रिलेटेड कौन से स्पेशल स्कूल्स हैं, कौन से स्पेशल सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाओगे वो सब सुविधाएं देते हैं। बहुत बार बहुत सारे एनजीओस को आप कांटेक्ट करोगे पर्सनली भी, जो आपके स्टेट में होंगे, तो वो आपके घरों पर भी आके आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं।
1: जी जी, तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिर्फ थोड़ा सा पता करना है, आपको सही जगह पर पहुंचना है। हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, पवन ने लिखा है उत्तराखंड से कि CWSN जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए वर्तमान में कोई एजुकेशन फैसिलिटी भी राज्य या केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है? डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि इनका सवाल है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए बहुत सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखी हैं। तो हालांकि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है ये बहुत बाद में गैजेट में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसमें एक समग्र शिक्षा अभियान है जिसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं इन बच्चों के लिए दी गई हैं। एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए गए हैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इंक्लूसिव क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्पेशल एजुकेटर्स नॉर्मल क्लासरूम में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम का उनके नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के हिसाब से उनको एक आइसोलेटेड फीलिंग ना आए। इसके अलावा एक पीएम ई विद्या पोर्टल है, वो भी इन बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए।
1: जी डॉक्टर स्मृति, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने शुरू में बताया कार्यक्रम के कि आप एक केयर गिवर भी हैं, तो किस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की जो बात हो रही है, पवन जी पूछ रहे हैं, तो किन किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है?
0: हर डिसेबिलिटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैं अगर सबसे पहले तो ये हेल्थ प्रोग्राम है, तो मैं एजुकेशन को शॉर्ट में करके और हेल्थ पर ज्यादा जाऊंगी। ये एजुकेशन में ट्रांसपोर्ट से लेके और बहुत सारे रूल्स हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, और बहुत सारे सरकारी स्कूल में फॉलो भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर किसी भी वजह से, अवेयरनेस की वजह से, एक्ट नया है, 2016 एक्ट आया, फिर 2017 एक्ट आया लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो बहुत सारी चीजों की वजह से अभी चीजें ना बन रही हैं, एडजस्टमेंट में हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो एफएम रेनबो को बहुत सारा थैंक यू कि अवेयरनेस इस बारे में आ रहा है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में बहुत कम बात करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: और उसमें इस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम होती है। क्लास में बच्चों को कहने को हम कह देते हैं कि समग्र शिक्षा होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, बहुत बार बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाता है तो कहीं का नहीं रह जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं है तो स्कूल रोज जाने की प्रॉब्लम है, कैसे जाएगा बच्चा, ये वाली सारी प्रॉब्लम है। तो अब जैसे CNG लगा हुआ है पीछे, तो व्हील चेयर नहीं जा सकती है बच्चे की, बहुत बार बहुत तरीके की प्रॉब्लम है।
1: जी, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी बात आपने बताई, और एक श्रोता जरूर वेट कर रहे हैं, तो हम पहले उनको ले लेते हैं, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हेलो
3: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जय किशन अग्रवाल, साइक्शन मार्केट चैनल से
1: जी। जी अग्रवाल जी, बताएं
3: आपको। नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
3: मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेजेस हमारे यहाँ दिल्ली में हैं, और बाहर के जो विकलांग लोग हैं बच्चे आके पढ़ते हैं, और जो दिल्ली के भी जो विकलांग दूर दूर रहते हैं, क्या उनके लिए कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, और अगर करते हैं तो किस आधार पे करते हैं?
1: कॉलेजेस की बात की उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या हॉस्टल की जब बात करते हैं तो हॉस्टल में इनके लिए कुछ अलग से कोटा होता है या कुछ अलग से ध्यान रखा जाता है? डॉक्टर सुमन, डॉक्टर स्मृति बता
0: रही हैं। यस, हर कॉलेज में 4% सीट डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व की गई है, 5% रिजर्वेशन है डिसेबल लोगों का। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल हैं, हॉस्टल की प्रायोरिटी देखो, और उसमें जो 4% या 5% सीट रहता है तो जरूरी, तो हॉस्टल की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? अब होता ये है कि कुछ बच्चे फिर भी घर के पास के होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे हॉस्टल्स में अब क्या करें उसके लिए, तो जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और थोड़ा सा मार्क्स बेसिस ले लेते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बच्चे दिल्ली के होते हैं उनकी प्रायोरिटी बाद में होती है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो एनजीओस चला रहे हैं जिनमें इन बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है।

0: परेशानी तो है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी चीजें एक तरीके से हो जाती हैं, कि सबको हॉस्टल मिल जाता है, सब कुछ हेवन नहीं है, लाइफ इज नेवर हेवन,
1: प्रयास तो करते रहना पड़ता है
0: बट
1: जी.
0: ऐसा नहीं है कि लाइफ इज हेल ऑल्सो, लाइफ इज
1: यस
0: ब्यूटिफुल।
1: यस लाइफ इज ब्यूटिफुल. एंड अभी हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं. हेलो
2: नमस्कार मैम.
1: जी नमस्कार.
2: नमस्कार
1: नमस्कार जी. हमारे रेडियो डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए.
2: मैम मैं दिल्ली से जाहिद बात कर रहा हूँ.
1: जी,
2: दिल्ली से.
1: जी जी जाहिद जी बताएं.
2: मैम से मेरे सवाल है कि मैं जो है 2001 में सर्टिफिकेट बना था, मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट 2001 में, आरपी पेशेंट हूँ मैं, तो 75% में बना हुआ था. अब जो बिल्कुल आई साइड जो है 1-2% ही रोशनी रह गई है, तो क्या ये दूसरा बन जाएगा नया? और दूसरा सवाल ये है मैम कि इसके मुझे फैसिलिटी क्या मिलेगी? वो बेनिफिट तो मुझे मिलता है जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, इसके अलावा जैसे मैं 32 साल से रेंट पे रहता हूँ, तो कुछ इसका कोई ऐसा है जैसे मकान मिल जाए कोई किसी लोन पे किसी चीज पे, या कुछ आमदनी का सिलसिला बन जाए, जैसे कुछ हमें काम मिल जाए, कोई एजेंसी है या कोई कारोबार या कोई भी चीज इस तरह की जो हमारी इनकम बढ़ जाए कुछ.
1: इन्होंने जो बताया कि 75% इनकी डिसेबिलिटी थी और अब ज्यादा बढ़ गई है, तो डॉक्टर सुमन क्या दोबारा से ये रिवाइज किया जा सकता
3: जी,
1: है?
3: जी बिल्कुल, ये दोबारा अस्पताल में जाके अपना सर्टिफिकेट रीअप्लाई करके और दिखा सकते हैं, अगर वो डिसेबिलिटी अगर वाकई
1: मेडिकल होता होगा इसके लिए.
3: बिल्कुल, दोबारा एक मेडिकल बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि अगर बढ़ गई है तो उसको जरूर रिवाइज किया जाता है.
1: और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, अभी डॉक्टर स्मृति ने भी बताया बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और जैसे अभी हमारे जो श्रोता है उन्होंने भी बोला कि क्या हमें कुछ काम मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, और एक स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है छात्रवृत्ति मिल सकती है क्या, इस तरह के प्रश्न आते हैं. स्किल्ड ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो जब हम पुनर्वास पर बात करते हैं तो ये सारे बिंदु भी जरूर छूना जरूरी है. तो मुझे बताएं कि डॉक्टर स्मृति आपसे पूछूंगी कि इस तरह की जो सुविधाएं मिल सकती हैं या मिल रही हैं क्या सरकार की तरफ से?
0: पहले मैं उन भाई साहब को जवाब देना चाहूंगी. हमें डीडीए की स्कीम्स में रिजर्वेशन मिलता है, पीएम आवास योजना में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और बहुत बार डिसेबिलिटी ग्राउंड पर अगर आपकी इनकम उसको मैच करती है तो घर फ्री के भी मिलते हैं, और आप उसमें बैंक्स के थ्रू पीएम आवास स्कीम के थ्रू पता करके उसको देख सकते हैं. दूसरी बात ये होती है कि आपको देखना है कि आपकी जो जॉब है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्वयं सहायता ग्रुप भी हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी हैं, बहुत सारे तरीके की चीजें हैं. आपको थोड़ा सा अपने एरिया में देखो, हम डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, मैं भी एक वुमन हूँ, मैंने भी एक्सप्लोर की है जिंदगी, और उस तरीके से आप थोड़ा सा अपने घर के बाहर निकलिए. बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना हाथ फैलाए, अपनी बाहें पसारे, आपका स्वागत करने के लिए, आपको समायोजित करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं.
1: जी बहुत बहुत पॉजिटिव बातें डॉक्टर स्मृति यहाँ बता रही हैं, डॉक्टर सुमन बता रही हैं, और इस तरह से हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीजों का हमें सही जानकारी मिले तो हम ये सब चीजों को अवेल कर सकते हैं. और अभी हम जो बात कर रहे थे प्रशिक्षण के बारे में, अभी डॉक्टर सुमन से मैं फिर से पूछूंगी, लेकिन इस बीच में एक जो मैसेज आया है उसको मैं लेना चाहूंगी. उत्तराखंड कोटद्वार से नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, शालिनी मैम आपको नमस्कार, और दिव्यांग समाज के लिए उनके प्रशिक्षण, उन्हें सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना है, इसी बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी. तो ये प्रश्न भी आ गया हमारे श्रोता का.
3: जी बिल्कुल, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए. देखिए ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या हैं. क्योंकि अगर एक जरिया बंद हो जाता है, जैसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में एग्जांपल दूं, अगर कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उनकी टांग चली गई है, तो अब उसको देखना पड़ेगा एजुकेशन लेवल क्या है या उनकी हॉबी क्या है, उसको हम वोकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको एक पीएम दक्ष DEPWD पोर्टल है, जिसमें दो बेसिकली डोमेन है. एक जो डोमेन है वो स्किल ट्रेनिंग के लिए है, दूसरा जो है दिव्यांग रोजगार सेतु है, जिसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई PWD जो पर्सन है वो किसी भी जॉब देने वाली संस्था के साथ जुड़ सकता है, अस्पताल में जाके भी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करवा सकता है, या वोकेशनल रिहैबिलिटेशन स्कूल्स हैं जो बेसिकली उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके दोबारा सक्षम बना के और कम्युनिटी में उनको वापस रीइंटीग्रेट करती हैं.
1: तो इस तरह के पोर्टल पे हम इंफॉर्मेशन होंगी,
3: बिल्कुल
1: उस इंफॉर्मेशन से आप

0: चीज को अवेल कर सकते हैं। और एक मैसेज हमारे तक पहुंचा है, लिखने वाली हैं जानवी भारती, इन्होंने लिखा है मेरठ में रहती हैं, रेडियो डॉक्टर रोज ये सुनती हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी विकलांगता है आंखों की और मुझे 40% विकलांगता है, क्या कोई स्मार्टफोन या फोन की सुविधा होती है जो हमें मिल सके, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके काम करने में और इन सब चीजों के लिए, तो इस तरह की कोई फैसिलिटी है डॉक्टर स्मृति?
1: यस, इस तरीके की फैसिलिटी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हमेशा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हमेशा लेके आते हैं स्कीम्स, और उसमें आपको फॉर्म भर के अपनी डिसेबिलिटी UDID के साथ अप्लाई करना पड़ेगा और वो आपको फोन देंगे। मिलता है सब कुछ, सुविधाएं मिलती हैं आजकल।
0: तो सुविधाएं हैं जैसा डॉक्टर स्मृति बता रही हैं, लेकिन आपको सही जगह पर पहुंचना है। यहाँ पर एक गाना सुनेंगे, क्या कहेंगी डॉक्टर स्मृति? एक गीत आपकी पसंद का मैंने निकाला है और मुझे लगता है डॉक्टर सुमन ने भी मुझे बताया कि ये गीत उन्हें भी बहुत पसंद है, मोनाली ठाकुर की आवाज में मोह मोह के धागे। तो ये गीत मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है, तो हम तीनों मिलकर पहले एक गीत सुनते हैं, लौटते हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
2: पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी तो भाई नमस्कार
1: जी। नमस्कार राजेंद्र जी।
2: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली
1: जी से। जी आप अपना प्रश्न करें।
2: और दोनों विशेषज्ञ साहिबाओं को भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार सबकी तरफ से। हाँ जी बताएं, क्या आप पूछना चाहते हैं?
2: मेरा पहला सवाल ये कि देखिए दिल्ली में जो है, दिल्ली में बसें चलती हैं और दिल्ली में विकलांगों के लिए बसों में अटेंडेंस भी अलाउ है और जो है पास भी अलाउ है, पर बसें पूरे हिंदुस्तान में चलती है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल, क्या ट्रेन में और हवाई जहाज में और ये जो मेट्रो चलनी शुरू हुई है, क्या इनमें भी अटेंडेंट और पास की सुविधाएं गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है क्या, इसके बारे में बताया कर चुकी है? और तीसरा सवाल मेरा है कि जो लोग भाई बस हैंडीकैप होते हैं, कुछ लोग बाद में होते हैं, तो जैसे प्ले प्रोसीजर था कि आप उसके लिए आप जाके अस्पताल में हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाइए, तो तमाम उम्र काम करता था, तो अब क्या उसको रिन्यू करना पड़ता है 4-5 साल में, या फिर जो है वही कंटिन्यू पूरी लाइफ चलता है? ये मेरे सवाल है, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी प्रश्न करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जैसे इन्होंने भी कहा कि क्या फैसिलिटीज दी जाती है दिव्यांगों को, और आप कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर स्मृति?
3: या मैं ये कहना चाह रही थी कि सुविधा तो नहीं है, लेकिन हर मेट्रो स्टेशन पर जब आप घुसते हो तो वहां पर आप बता देते हो कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मेट्रो का स्टाफ स्वयं आपको असिस्ट करता है। आपके जाने से पहले मेट्रो स्टेशन का स्टाफ खड़ा रहेगा आपको रिसीव करने के लिए, और आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह की सवारी पर आपको बैठा के छोड़ेगा। तो इस तरीके की सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन ये वाली तो अटेंडेंट वाली सुविधा नहीं अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये जो रिन्यू कराने का कह रहे थे मैम, ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, लेकिन ये डिसेबिलिटी के पास इसमें जैसे टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आपके सर्टिफिकेट पर है तो उसको रिन्यू तो नहीं कराना पड़ता है
1: जी। डॉक्टर सुमन आप बताएं, जैसे ये बोल रहे थे क्या अगर एक बार बन जाता है तो उसको रिन्यू भी कराना होता है क्या?
4: जैसे कि मैडम ने बताया, अगर लिमिटेड वैलिडिटी या टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसकी अवधि उस कार्ड पे मेंशन होती है कितने समय के लिए कार्ड वैध है या वैलिड है। अगर परमानेंट है तो उसको रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी जी जी, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन कुछ और बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचे कि जब हम दिव्यांग की बात करते हैं उनकी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम बात कर लेते हैं कि वो हॉस्पिटल में अगर वो पहुंचते हैं तो किस तरह की सुविधाएं उनको दी जाती हैं।
4: जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में जागरूकता काफी हद तक आ चुकी है और भी आगे इसकी आवश्यकता है कि जागरूकता बढ़े और ये प्रोग्राम जैसा कि इस तरह की चीजों की बिल्कुल बेहद आवश्यकता है। अस्पताल में मैं आपको बताना चाहूंगी, दिव्यांगजनों के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड काउंटर होता है, जब वो घुसते हैं उनके लिए पार्किंग होती है, सबसे पहले गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग होती है, असिस्टेंस होती है। मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ, एक डिसेबिलिटी पार्किंग है, देन उनका एक अलग से काउंटर होता है, उनको बकायदा मैं ये हेल्प यू से काउंटर से उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि उनको किस विभाग में जाके दिखाना है। सुगम में लिफ्ट होती हैं आजकल विजुअली चैलेंज के लिए।

0: इंजीनियरिंग वालों के लिए हर तरह की लिफ्ट जो है हर फ्लोर पे उपलब्ध हैं ताकि वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें।
1: जी, तो ये सुविधाओं की हमने बात की, पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर स्मृति हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्मृति, ये बताएं किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं?
2: या एक तो मैं केयर गिवर भी हूँ, तो हॉस्पिटल आना जाना, क्योंकि मेरी बेटी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से 100 ट्रीटमेंट है वो, तो हॉस्पिटल आना जाना और बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत क्राउडेड होते हैं हॉस्पिटल्स और पार्किंग तो बहुत दूर की बात आती है, तो उसमें आने में पहले प्रॉब्लम होती है। फिर मेडिसिंस जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का धन्यवाद जिन्होंने QR कोड मेडिसिंस पर बहुत जगह पर अभी रिकॉग्नाइज कर लिया 300 मेडिसिंस पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और सारे मेडिसिंस पर भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मेडिसिन लेना भी अपने आप में एक डिसेबल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कई तरह की एक ही साइज की होती है, उसको पहचानना और उसको सब कुछ करना बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब QR कोड या ऐसे एक्सेसिबल मेडिसिंस और या हेल्थ केयर के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ही सुविधाएं हो जाती हैं। बहुत बार डॉक्टर्स एक्सरे या कोई भी चीजें नहीं समझ पाते हैं, तो टाइम का भी ये रहता है, तो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते हैं, लेकिन अवेयरनेस आ रही है, इसलिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्टर्स को भी बताना जरूरी है कि कैसे, या हेल्थ कर्मी को बताना जरूरी है, नर्स को, वार्ड बॉय को, कि एक डिसेबल को आप कैसे हेल्प करोगे, उसको किस तरह की जरूरत है, तो उससे ज्यादा सुविधाएं आएंगी हॉस्पिटल में। और सरकार इस तरफ अग्रसर है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोगों की ऐसे इनिशिएटिव के बाद सरकार और भी ज्यादा काम करेगी और सारी चीजों को हमारे हेल्थ केयर लाइक बहुत सारी पॉलिसीज भी बनी है, अभी काफी अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है, स्पेशली डिसेबल विथ विमेन विथ डिसेबिलिटी को लेके बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो सोचने में भी, अगर मैं बोलूंगी तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा।
1: जी, जी, जी। हम समस्याओं पर बात आज कर रहे हैं, पर समाधान पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं इनको कहना चाहूंगी कि इसके अलावा जब हम अस्पताल में जाते हैं, जैसे अस्पताल की मैं बात करूं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सारी इन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू।
1: जी, तो बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लगता है हमारे श्रोताओं तक पहुंची होगी। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली डॉक्टर स्मृति की, बहुत सारी जो QR कोड से जो ये दवाइयां परचेज की जा सकती हैं, इस पर कार्य चल रहा है, उस तरह का कार्य और आगे बढ़ता रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है, यश है, न्यू दिल्ली में रहते हैं, ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू आस्क वॉट कैन अ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स डू टू रिड्यूस द स्टिग्मा एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी हम चाहते हैं जहां पर सबको समान अधिकार हो, तो ये अधिकार और सब कुछ सारी सुविधाएं सबको मिल सके, इसके लिए क्या बहुत जरूरी है, क्या हमें इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना चाहिए या कलेक्टिव वर्क करना चाहिए? बहुत कम समय है, पर मैं दोनों आप दोनों से थोड़ा थोड़ा सा इस बारे में चाहूंगी।
2: या सबसे पहले तो इस तरीके की स्टिग्मा से लड़ने के लिए जो आज का इनिशिएटिव है वो शालिनी मैम को बहुत सारा धन्यवाद, इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हम सबको डिसेबल्स को इक्वल समझना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी को देखें, डिसेबिलिटी को बाद में देखें, तो स्टिग्मा अपने आप चला जाएगा। उनसे फ्रेंडशिप करें, उनकी जिंदगी में समझे, ये सोसाइटी के लिए जरूरी है कि उनके अलग से कॉलोनी ना हो, अलग से घर ना हो, अलग से वो एक दूसरे के साथ न रहें। हमें कोशिश करना चाहिए, हम सबको कोशिश करना चाहिए, हम डिसेबल भाई बहनों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम मोर ऑफ सबके साथ रहने की कोशिश करें और उनको अपने बारे में खुल के बताएं, खुल के अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और खुल के उसके समाधान के बारे में बताएं और हंसे खुशे से रहें। डिसेबिलिटी सबके पास है, किसी न किसी तरीके से उसको बस केटर करने की जरूरत है।
1: बहुत अच्छी बात बोली। और डॉक्टर सुमन आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स?
0: बिल्कुल, मेरे भी यही है कि हमें डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोशल इंक्लूजन पे हमें ध्यान देना चाहिए, बेबी इट्स इकोनॉमिक और इन डे टू डे लाइफ। अगर हम उनको अपने से अलग नहीं समझेंगे, दे विल बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, तो स्टिग्मा अपने आप चले जाएगा, दे विल नॉट कंसिडर देम स्पेशल, यू इंक्लूड देम इन सोसाइटी एंड वेलकम देम, क्योंकि देखिए सबकी भागीदारी से ही समग्र प्रगति संभव है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली और अब इसी तरह से हम मिलजुल कर रहें और कार्यक्रम आप सुनते रहिए और ये कार्यक्रम आपको बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। और आज का जो ये कार्यक्रम था वो विशेष हमने केंद्रित किया था दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम

0: जो चल रहे हैं उसके ऊपर, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। और हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर्स रही डॉक्टर सुमन बादाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर स्मृति सिंह हमारे साथ थी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों समय निकाल कर यहाँ आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
1: धन्यवाद।
0: और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया है, और आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को दीजिए इजाजत, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आकाशवाणी
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: घर से, जल्दी निकल जाती है घर से, देर से वापस आती है, पत्नी मुझे सताती है।
1: पत्नी सताती है, आए पतीज मैनू मेरी पत्नी बहुत सताती है, आज ते मेरा दिन है।
2: ओ चाचा की हो गया, क्यों रोई जाना, प्रोग्राम दी अजे शुरुआत हुई है, आपा लोकां नूं हसाउंदे आ ते तू रोण लग पिया।
1: पतीज तैनूं नहीं पता अज किहड़ा दिन है।
2: नहीं चाचा मैनूं पता है अज किहड़ा दिन है, लेकिन तैनूं की हो गया।
1: पतीज पहला दस अज किन्नी तरीक है।
2: चाचा अज 27 तरीक है।
1: इतना नहीं पतीज, पूरा दस किन्नी तरीक है, नाल महीना किहड़ा है।
2: चाचा अज 27 जून है।
1: 27 जून पता केड़ी तरीक हुंदी है?
2: केड़ी तरीक हुंदी है चाचा?
1: ओ हुंदी है सताए होए पतियां दी तरीक। सो अज सताए होए पतियां दी तरीक है, सताए होए पतियां दा दिन है, यानी कि अज हसबैंड डे है। सो अज पतियां दा दिन है ते अज मेरा आज दा दुख बाहर आ गया। हां भतीज तू इदां दा सैड म्यूजिक लगा के मैनू होर दुखी कर दे।
2: ओ नहीं चाचा इदा दी कोई गल नहीं हैगी, तू टेंशन ना लै, बहुत सारे दोस्तों ने अपन फोन करना है, अपनी फरमाइश भी पूरी करवानी है। चल इदा करते हैं, जिहड़े दोस्त सानू अज कॉल करनगे ना, वो आपा तेरे नाल ही गल करवानी है, तैनू थोड़ा जा हौसला देणगे, ते नाले मैं इह वी देख लांगा कि अज मेरे फत्तू चाचे दे नाल दियां होर किन्नियां कुछ सताईयां होईयां जूनां इस धरती तक तुरियां फिरदियां ने। तो दोस्तों जेकर तुसी कॉल करनी है, नंबर है जी 0181 23 42 174, यानी 0181 23 42 174। इस नंबर पर तुसी कॉल करो, उन्नी देर तक चाची जिहड़ी मेरे चाचे नूं सताउंदी है, वो चाचा जिहड़ा गीत हुणे सुन रिहा सी ना, वो आपां उन्हां नूं सुना दिंदे आ। उन्नी देर तक इंतजार करदे आ साडे अगले कॉलर दोस्त दी।
0: पत्नी हां हां

घर से ये जल्दी निकल जाती है, घर से देर से वापस आती है, पत्नी मुझे सताती है।

उस दिन आया बुढ़ापा, ये 60 बरस की बुढ़िया, ये 60 बरस की बुढ़िया लेकिन फिल्मी गाने गाती है।

0: के मुझको भाई चौकीदार बना के मुझको सारी रात जगाती है। पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है।
1: दोस्तों प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो जलंधर। पत्नी मुझे सताती है, मेरे चाचा जी डिमांड के उत्ते गाना लगाया सी। चाचा जी इस वेले नाल बैठे रो रहे ने, फत्तू चाचा जी कह रहे ने कि अज सताई हुई जूना का दिन है, तो कहिंदे अज सताईयां हुई जूना साढ़े कोल आउणगियां प्रोग्राम हैलो जलंधर च, ते अपने अपने दुखड़े सुनाउणगियां। सो पहली कीड़ी सताई हुई जून साढ़े कोल पहुंची है जी, आओ पहले उन्हां दे नाल गल कर लैने। हैलो
2: हैलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम हैलो जलंधर च।
2: शुक्रिया जी।
1: कौन जनाब गल कर रहे ने?
2: मैं संदीप सिंह बोल रहा अमृतसर।
1: संदीप जी की हाल चाल ने? किन्नी क सताई हुई जून हो तुसी?
2: हाँ जी।
1: मैं कहा किन्नी क सताई हुई जून हो तुसी?
2: बहुत है नहीं सताई हुई, क्योंकि हफ्ता हो गया गई हुई पेके वाइफ।
1: अच्छा, ताडे ते मतलब चंगे दिन चलते पे हैं।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, तो जो हूँ एक हफ्ते बाद उन्होंने वापस आ जाना तो फिर ताडे ओही दिन शुरू हो जाने? चाचा जी करो गल अपने आए ने अमृतसर तो, संदीप जी कहंदे कि मैं गल करदा। हेलो
2: हेलो चाचा जी।
1: हां जी, कौन है?
2: मैं संदीप सिंह बोल रहा
1: हूं। संदीप तू भी भरावा सताई हुई जून ही लगता मेनू। तेरी भी आवाज नहीं निकलती, मेनू पता लग गया तेरी आवाज किने दबी है। हां, मेनू पता तेरे गल दे उत्ते अंगूठा किने रखिया होया।
2: नहीं हुण तो नहीं कोल हैगे,
1: चाचे दा बुरा हाल, चाची किते नहीं जांदी। आ सवेरा हुंदे सार ही मैनूं कहिंदी, कहिंदी जी अज किन्नी तारीख है। आ मैं खुश हो के कहता, मैं क्या भागवाने 27 जून है, ते मोरो हसण लग पई, कहिंदी अज तुहाडा दिन है 27 जून दा। हौसला देना चाहिए। अल संदीप जी तुही भी हौसला नहीं दिता उन्होंने, तुही भी गल सुन बह गए।
2: हौसला ही है
1: सारे एक आप इस वे अज साडा दिन है, सताईया हुई सारे एक जी। चलो खैर कोई गल नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम साढ़े जुड़े, तो थोड़ा जहा हौसला तो दिता पर चाचा जी खैर कोई फर्क नहीं पिया। चलो कोई गल नहीं जी, चाचा जी वास्ते गाना प्ले करते हैं। तुम आए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल की, मेहरबानी, थैंक यू जी। और इंतजार करते जी साढ़े अगले कॉलर दोस्त का कि वह कदों साढ़े को आने जी, तो चाचा जी हौसला देने कि चाचा जी टेंशन नहीं लैनी, सारे का यही हाल है।
3: संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

0: FM 106.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है जी। और बड़ी भज दौड़ करके चाचा जी नूं फड़ के मैं वापस लैके आया हूँ। मैं क्या आ जाओ, उस दोस्त तुहाडे ही ने जिन्हें सानू कॉल आ रही ने, सारे तुहाडा हाल चाल जानना चाहते ने और चाहते ने कि चाचा जी इस वेले क्यों रो रहे ने, ते तुहानू चुप कराउण दीआं ही सारे जने तरकीबां ला के बैठे हुए ने कि किसे तरह चाचा जी दे चेहरे दे उत्ते स्माइल आ जाए। सो स्माइल लियाउण दे लई साडे बहुत सारे दोस्तां ने कोशिश कर ली है, ते हुण दे दे किहड़े अगले दोस्त आए ने जिहड़े चाचा जी नूं हसाउण दी कोशिश करनगे। हैलो
1: हेलो भाई, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, की हाल चाल है सनी जी?
1: बहुत वधिया
0: जी। दो साडे सनी भगत जी साडे नाल जुड़ चुके ने जलंधर तों। मैनूं लगदा है सनी भगत जी जरूर हसा देणगे जां अपना दुख दर्द वड्डा करके दस देणगे ना, ते शायद चाचा जी नूं लगेगा कि नहीं मेरे तों वड्डा वी दुखी हैगा दुनिया ते, है इदां ही? सनी भगत आ गए, कहिंदे मैं भी बहुत दुखी हां, है ना, तुहाडे वर्गे नहीं, आ जाओ बिलकुल।
1: हेलो चाचा जी,
2: राजी रो पुत।
1: चाचा जी
2: तुहाडे
1: वर्गे हाल मेरा
2: ही है। चाचा जी दूजा रोंदे नहीं, हुणे हस्या थोड़ी देर पहला। ए भी मैनू इदा लगता तेरी चाची वाल दे पासे तो अज जिन्ने आ रहे आ कोई ही सताई हुई जून नहीं हैगीआं, ए सारियां सतौण वालियां जूना आ।
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਸੋਣ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ।
2: ਘਸੋਣ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ,
1: ਮੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ,
2: ਠੁੱਡੇ
1: ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ,
2: ਠੁੱਡੇ ਪੈਂਦੇ, ਠੁੱਡੇ
0: चाचा आया लेकिन मुक्के मेरे क्यों मारी जाना है, दस भला
2: झूठ बोल रहा है यार। दस चाचा इना अखा का रो रो के पानी मुक गया मेरा, मेनू कहना चाचे की अखा च पानी नहीं आया है। बहुत गलत गल है सनी, तू भी यार उदला ही हो गया है, अपने चाचे वाल का नहीं होया।
1: नहीं,
2: अच्छा ब्याह होया, किन्ने साल हो गए ब्याह हुए?
1: निकल
2: निकलदा ते जो चाचा रोंदा उदो तेरा रोना नहीं निकलदा। कोई गल नहीं, कर लो मगोला चाचे नूं अज जिन्नियां करनियां, भतीज कर ला, मेरे तो नहीं हुंदी गल पाई इन्ना।
0: हेलो मन दे अपने आप नूं, सताई हुई जून भी अज तुहाडा दिन है, मन दे इस गल नूं।
1: हांजी हांजी मनदे आ, पर बस खुशी बहुत है, ब्याह करा गए जी, बहुत वधिया लाइफ चलन दी सर जी।
0: ठीक है जी, वैसे अलग जी तुसी मैनू गल दस रहे हो कि व्याह करा के सताई हुई जून भी समझ रहे हो, ते नाले भी कह रहे हो कि खुश भी हो। चलो ठीक है जी, खुश रहना चाहिए, परिवार हमेशा हसदा वसदा रहे। तुसी कॉल की थी सनी भगत जी, थैंक यू सो मच जी साडे नाल जुड़न लई ते चाचा जी नू समझाउण दे लई। सो दोस्तों अगला ट्रैक पेश कर रहे हैं जी चाचा जी की फरमाइश के उपर। चाचा जी कहते मुझे मेरी बीवी से बचाओ, उस बीवी तो जेकर बचना चाहते हो तो चाचा जी नू समझाओ थोड़ा जहा कि ये चीज़ा चलदियाँ रहिंदियाँ ने, बस चलदियां रहिंदियां ने, सारियां दी जिंदगी च इह दिन आउंदे ने जी। चाचे दी जिंदगी च मैनूं लगदा खासे ही वड्डे दिन आ गए।

0: आसमान में काली घटा कब छाएगी, आसमान में काली घटा कब छाएगी, लोगों की बीवियां मायके चली गई मेरी वाली, आओ मेरी वाली जो है ना वो कब जाएगी।
1: ओ चाचा कुछ नहीं हुंदा, चाची नूं भी कह दिंदे आ भी मायके चक्कर लाया पेके जाया थोड़ी देर दे लई घूम फेरा, तू ज्यादा उदास ना हो, इनियां सैड सैड शायरियां ना कर। आ मैं अगले कॉलर दोस्त नूं बुला लिया, वो समझाउंदे ने तैनूं, ठीक है। हैलो
2: हैलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार प्रवीण जी, की हाल चाल ने?
2: बस बिल्कुल वधिया जी,
1: वधिया, चलो ठीक है जी, बहुत वधिया। मैं कहा चाचा जी ने यार थोड़ी जी गल करियो, समझाया उन्हां नूं कि कुछ नहीं होया है।
2: हां जी,
0: हैलो।
3: हैलो चाचा जी। की करा, मेरी ते 27 जून होगी पूरी दी पूरी। शादी कर लियो फिर।
0: की कर लियो?
3: वो तो शादी दोबारा कर लो।
0: हुण उमर है, हुण ते अगे जान दी उमर, हुण केड़ी शादी करनी, मेरे कोल तां पहली नहीं चंगी तरह बैठी शादी।
3: हौसला ना करो।
0: हौसला कित्थों करा, हुण ते ऑनलाइन भी हौसला नहीं मिलदा कितों।
3: पुत्तर होई दा नहीं हुंदा।
0: मैनू ते अज जिन्ने कॉल आले आए आ मैनू इदां लगी जांदे आ मेरी घर वाली दे सो पेके परिवार चो ही आ सारे उधरले पासे ही आ गए किते।
3: दुख समझदी है?
0: कोई नहीं दुख समझदा, मैं बहुत सताई हुई जून आ, बहुत ज्यादा किते।
3: कोई गल नहीं, 2 घंटे हो गए, फिर तू पता सही हो जाना है।
0: फिर सही हो जाना, चल ठीक है। तू कहंदे आ
3: लड्डू खाने आ ते बाद च किन्ने मौका वा। लड्डू खाने लगे ते बड़े खुश होना ही।
0: लड्डू ते मिठा सी ना, पता नहीं सी मिठा, ओ मैनू पता नहीं सी ना मिठा मिठा खवा के इन्हां ने बाद चो कौड़ी जी दवाई भी देनी आ। हां उदों इन्नी समझ नहीं सी, इन्नी समझ हुंदी तां इत्थे तक पहुंचना ही नहीं सी।
3: हुण समझो फिर।
0: ठीक है, बहुत सोहनी एक्टिंग करदे हो तुसीं मेरे वांगू।
3: कोई गल नहीं, खुश हो के दिखा दे।
0: ठीक है, गाना केड़ा सुनना है? ठीक है, गाना सुना देना, जिदा मैं गुलाम हूं उदा तुसी भी गुलाम हो पत्नी दे। हर आदमी को पत्नी का बीवी का गुलाम होना चाहिए, है जी। चलो बंदे नु सच्चाई, सारे गुलाम हो जाने ते मैं कहना मसला ही मुक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा कॉल करन लई।
1: ओ चाचा इन्ना नहीं रोईदा हुंदा, सारे दुनिया ते इत्थे जिन्ने भी मर्द ने ना जेड़े हसबैंड ने ओ सारे अपनी वाइफ दे गुलाम ने, ते जेकर तुसी भी हो ते इहदे विच शर्माउण वाली कोई गल नहीं। सो कीप स्माइलिंग।

0: आज हमारी शादी की सालगिरह थी।
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना? मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन।
2: ओ चाचा देख, इन्ने लोग आए सी अज दे इस प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच ना तेनू मनाउण वास्ते, ते जेकर तू अज खुश नहीं ना होया ना तो सारे लोगों ने तेरे वर्गे दुखी हो जाना। ते की तू चाहना है कि सारे लोग तेरे वर्गे दुखी होण?
3: नहीं भतीज, मैं नहीं चाहता मेरे वर्गे दुखी होण।
2: ते जे तू चाहना नहीं दुखी होना ना तो जिहड़ी तू शायरी लिखी सी ना चाची, ते ओह सुना दे एक वारी।
3: जिहड़ी चाची ने भेजी सी?
2: हाँ हाँ ओही वाली।
3: पत्नी हुसन का पिटारा, गुलाब तारा मून होती है। पत्नी हुसन का पिटारा, गुलाब तारा मून होती है। पति बेचारा होता है, सताई हुई जून होती है।
2: सो बहुत वधिया लगा चाचा जी दे नाल। चलो मैं ते चाचा जी नूं बाहर लैके जाना, इन्हां नूं थोड़ा खवाना पिलाना, थोड़ा बाहरली हवा दवाना। उन्नी देर तक तुसीं किते नहीं जाना, क्योंकि जी हुण तों कुछ ही पलां दे विच युववाणी प्रोग्राम यूथ दे अपने प्रोग्राम की शुरुआत हो जा रही है। सो अज का युववाणी प्रोग्राम बहुत ही खास है। युववाणी वाले आर जे स्टूडियो दे विच विराजमान हो चुके ने। हुण तों कुछ ही पलां च तुसीं सुनन जा रहे हो जी युववाणी प्रोग्राम।

वेलकम बैक दोस्तों, सैगमेंट चल रहा है जी वखरा स्वैग, जिद असी गल की कि किवें असी घट पैसों नाल अपने आप को वधिया दिखाउणा है। तुहानू इह तां दस दिता पर तुहानू इह वी तां दसीए कि किहड़े प्रोडक्ट्स ने या किहड़ियां इदां दीआं चीज़ां ने जिहड़ियां घट पैसे विच आउंदियां पर अट्रैक्टिव लगदियां। जेकर असी फैशन की गल करिए ना दोस्तों, तो जिहड़े मैं प्रोडक्ट्स दसन जा रही हाँ ये सारे मैं लगता है कि जेकर तुसी लोकल मार्केट्स तो खरीदो, जिवें असी गल की अज की गल विच कि असी जिहड़ा छोटे कारोबारी हाँ या छोटे स्टार्टअप उन्हां दा भी हौसला वधाउणा है तो ये तुसी उत्थों खरीद सकते हो। पहला है जी बैगी जीन्स, अजकल बहुत फैशन विच है, मुंडे भी मतलब इनू बहुत ज़्यादा वेयर कर रहे हैं, ट्रेंडिंग च जा रही है और कुड़ियां भी। दूजी है जी कारगो पेंट, जिवें असी देखते हैं ना कोरियन ड्रामास वगैरह विच, मतलब जिवें दे उन्होंने वेयर किए होंगे है, इंडिया च भी वो फैशन काफ़ी चल रहा, सो कारगो पेंट्स जड़ियां ने वो भी ट्रेंड कर रही ने। इस तो इलावा स्ट्रीटवेयर जड़े होंगे आ, जिवें कि असी देखते हैं कि काफ़ी सारिया ने मतलब जिदा कार्ट वगैरह लगाइया होंदिया ने ट्रेंडिंग कुर्तियां दियां, ट्रेंडिंग टी शर्ट्स दियां, तो तुसी वो भी सस्ते च वेयर करके अपने आप नूं क्लासी दिखा सकते हो।

0: चुल।
1: बिल्कुल दोस्तों, हाजिर हो गए हैं दोबारा इस गीत तो बाद। तो असी क्वेश्चन पूछा सी कि इदां दी केड़ी चीज़ है जिहड़ी जिन्नी ज़्यादा वधदी है उन्नी ही घटदी जाती है। जे एक क्लू दवां ना दोस्तों, तो वह मतलब साडे रिलेटिड है, साडे कोल हुंदी है, हर एक कोल हुंदी है। वह एक डिजिट की भी हो सकती है, दो डिजिट की भी हो सकती है, तो तीन डिजिट तक तो कोई विरला बंदा ही है जिहड़ा पहुँचता होएगा। तो असी उहदे लई अपना बर्थडे भी सैलीब्रेट करते हैं। इस तो वध होर की क्लू हो सकता है?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, खुशी ने क्लू भी दे दिते है, क्वेश्चन भी खुशी ने रिपीट कर दिता है, तो साडे नाल जवाब देने लई लिसनर भी जुड़ चुके ने। आओ उहदे नाल गलबात करदे हां ते उहनां दा जवाब जानदे हां। हैलो
3: हैलो
2: हैलो, सत श्री अकाल जी।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कौन गल कर रहे हो ते कित्थों बोल रहे हो? अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम युवाणी दे विच, शो इंजॉय कर रहे हो जी?
3: हां जी मैडम जी, मेरा 25 साल बाद फोन लगा जी।
2: जी जी, बहुत वधिया गल है। ते फिर जेड़ी खुशी ने बुझारत पुछी सी अशोक जी, तुसी ओ सुनी सी जी? जी जी जी ते फिर जवाब भी दस दियो जी।
3: उमर है जी।
2: बिल्कुल सही जवाब है अशोक जी, उमर है जड़ी, जिवें खुशी ने मतलब क्लू भी दिता सी कि असी बर्थडे भी सैलीब्रेट करते हैं, सो उमर ही है जड़ी, जिन्नी वधदी जांदी है उन्नी ही घटदी जांदी है। अशोक जी जी जी जी बिल्कुल सही कहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी फोन करके अपना जवाब देने लई। जी जी जी। तो दोस्तों इसे तरह तुसी भी साड़ी बुझारता दे जवाब दे सकदी हो, क्योंकि समा हजे है। तो हुण पहला खुशी ने पूछी सी, हुण वारी मेरी है, सो मैं बुझारत पूछदी हाँ। तो मैं सौखी जी पूछूंगी, देखदे आ कौन जवाब दे पाता है तो कौन नहीं। ठंडा ठंडा पानी बिच रहिंदी नूरा राणी। मैं बुझारत दोबारा रिपीट कर देनी हाँ, ठंडा ठंडा पानी बिच रहिंदी नूरा राणी।
1: इसका आंसर किदा देना है तुसी 0181 23 41 174 ते कॉल करके या फिर आकाशवाणी दे फेसबुक पेज ते जाके।
2: ते फिर फटाफट जवाब दे दियो क्योंकि सानू तुहाडी कॉल दा इंतजार रहेगा। उस तो पहला करते हैं एक गीत इंजॉय।

0: पंजाबी
1: बिल्कुल सही जवाब है।
0: च खुंबा भी कहते हैं अपना।
1: हाँ जी, क्योंकि ओदी जिहड़ी बनावट हुंदी है, ओदा जिहड़ा रूप हुंदा है, ओह इक घर दी तरह ही दिखदा है, बट ओदे विच कोई खिड़की दरवाजा नहीं हुंदा, इक सब्जी है खाण दी।
0: हाँ
1: ते बहुत बहुत धन्नवाद पाली जी साडे नाल गलबात करन लई।
0: थैंक यू मैम।
1: ते सिमरन हुण वेला हो गया है तुहाडे ब्रेन दा टेस्ट लैण दा।
2: अच्छा जी,
1: मैं एक क्वेश्चन पूछदी हां तुहाडे तों, तुसीं इहदा आंसर देणा है कि एक थाल मोतियां नाल भरिया।
2: अरे ये तो बहुत, मैनूं लगता मेरी दादी मेरे ते बुझारत पूछदी हुंदी सी निक्के हुंदे। ते इहदा जिहड़ा जवाब है वो आसमान है।
1: बिल्कुल, मैं ज्यादा ही सौखी पूछ ली तुहाडे तों, तुहाडी वारी हुण, तुसीं कुछ पूछ लो फिर।
2: बिल्कुल जी, पर मैनूं लगता कुछ समा जिहड़ा हुण लंघदा जा रहा है ते साडा प्रोग्राम जिहड़ा आ ओह हुण समाप्त होण वाला है। सो असीं अपने जिहड़ी है इक दूजे दा दिमाग टेस्ट करना, वो असीं अगली बार जरूर करांगे। ते मैनूं लगता कि साडे लिसनर्स ने भी साडे नाल जिहड़ा शो है बहुत ज्यादा इंजॉय कीता होएगा। ते दोस्तों, आई होप तुसी प्रोग्राम इंजॉय किया होएगा, पर समा सानू होर इजाजत नहीं देंदा, इसलिए मैनू आरजे सिमरन नू
1: ते मैनू आरजे खुशी नू दे इजाजत।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।

प्रेरणा स्रोत या फिर कुछ वो गल्लां जो तुहानू हौसला दिंदियां ने मुड़ तों अपनी जिंदगी दे विच उठ खड़े होण दा ते कहण दा लव यू जिंदगी। सो गल्लां बातां दी सांझ आपां तुहाडे नाल पाउणी है जिस प्रोग्राम दे विच, पर फिलहाल दे लई शुरू करांगे कुछ तजुर्बे वालियां गल्लां तों। गल्लां दे नाल ना करिए आपां, जेकर गीत ना कर लईए तां ज़्यादा वधिया नहीं होगा जी। गीत तों बाद फिर आपां गल्लां वी करांगे तजुर्बे वालियां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।

टॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

नमस्कार, पेश ने FM न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो सोमवार तक सेशल्स दे तीन दिन दौरे ते ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि MSME खेतर देश की आर्थिकता नू मजबूत करन च महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात दे 14 शहरों च भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की थी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दे अगले पड़ा सूरमा मुहिम दी शुरुआत। नशा छड़ चुके नौजवान होरना लोकां नू नशा छड़न च करनगे उनां दी मदद। पंजाब दे राजपाल ते चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने नशा दी दुरवरतों ते गैर कानूनी तस्करी नू खत्म करन लई इक सांझी समाजिक लहर दा सद्दा दित्ता है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर च सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के एक होर नैटवर्क का पर्दाफाश करदियां 4 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने वालों खिलाफ विढ़ी गई सख्त मुहिम तहत पंजाब पुलिस ने वाहनों से गैर कानूनी हूटरां सायरना फ्लैशरां ते ब्लैक फिल्मां की अण अधिकृत वरतों विरुद्ध 15 दिनों की विशेष राजव्यापी मुहिम चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। 3 जुलाई तो शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा लई तैयारियां तेज हो गई ने। भारत दे किदांबी श्रीकांत रौनक चौहान ते देविका सिहाग कैलिफोर्निया दे फुल रटन च US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दे सैमीफाइनल च पहुंच गए ने। ਇਹ ਸਨ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ।

कहता जी कि खूब सारी तरक्की करो, तरक्की उस शख्स ने की थी। और उस तो बाद जदों जवान होया मुंडा म्यूजिक अपना लगा तैयार करन, तां लता मंगेशकर जी ने पंचम दा दे म्यूजिक तले बहुत फिल्मां दे विच गाने गाए, बहुत ज़्यादा जड़ी मतलब काउंटलैस गाने आर डी बर्मन दे म्यूजिक तले लता जी ने गाए और आशा जी ने गाए। ए सी उन्हां दा कमाल जादू सचिन देव बर्मन और उन्हां दे बेटे राहुल देव बर्मन दे म्यूजिक था। एक और ट्रैक सुनते हैं, आहा कमाल है ना गाना, केड़ी फिल्म दा दसदा जरूर आके।

107.7 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है और प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो फिल्मी दुनिया और असी गल कर रहे हैं पंचम दा दी और पंचम दा दे रंग दे विच रंगिया होया सी उस इरा दा 70s 80s दा म्यूजिक और दोस्तों उन्होंने बहुत सारे अणगिणत गाने जड़े ने अणगिणत गाणियां दियां धुनां बनाईयां और एक ऐसी फिल्म सी जिस दे लई उन्होंने गाने तो जरूर बनाए बट उस दे लई उन्होंने मेहनताना नहीं मिलिया यानी कि पैसे नहीं मिले। वो केड़ी फिल्म सी? अधूरी फिल्म सी। दरअसल तुहानू दस दें कि प्यासा फिल्म जिस दे गाने दी असी चर्चा भी की कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए मतलब आ जा प्यारे पास हमारे काहे घबराए सुनया ना गाना और ये गाना तो उन्हां दी धुन ते बनिया सी प्यासा फिल्म जिस दे प्रोड्यूसर डायरैक्टर एक्टर सी गुरदत्त साहब और उस वेले बच्चा छोटा सी पंचम दा और बेटे ने अपने पापा दे नाल रह के उस फिल्म दे सारे गाने जिहड़े ने जदों बन रहे सी सचिन देव बर्मन ओह गाने बन तैयार कर रहे सी प्यासा फिल्म दे तां उस वेले छोटा बर्मन नाल नाल ही हुंदा सी और गुरदत्त उस दी प्रतिभा तों चंगी तरह वाकफ सी। इसे करके जदों थोड़ा वड्डा होया और उन्होंने एक होर फिल्म तैयार की राज और ये फिल्म जदों बननी स्टार्ट हुई 3 रील्स जड़ियाँ ने इस फिल्म दियाँ बन भी गई। वहीद रहमान जड़े है वो इस फिल्म दे विच गुरदत्त दे ऑपोजिट सी। म्यूजिक तैयार करन दे लई चुनिया गया आर डी बर्मन ने गाने तैयार किए 5 गाने जड़े ने रिकॉर्ड कर लए गए सी बट उस फिल्म नू जदों रील्स बन रही सी शूट हो रहा सी सब कुछ बट कितने कितने गुरदत्त नू ये लगा कि यार फिल्म ट्रैक ते आ नहीं रही जो बनाना चाह रहे हो बन नहीं रही। इस करके उस फिल्म नू विच ही बचाले ही छड़ दिता गया रोक दिता गया और बंद डब्बे च बंद कर दिता गया उस फिल्म नू। बट जिहड़े गाने उस वेले राज फिल्म दे विच तैयार किए सी राहुल देव बर्मन ने उन्हां गाणियां नू दोबारा उन्होंने यूज भी नहीं किया कितने और ना ही वह गाणियां दे कोई ट्रैक्स बने और LP ट्रैक्स नहीं बनाए गए उन्हां गाणियां दे और उन्हां नू कोई पैसा भी नहीं मिलिया मेहनताना उन्हां गाणियां नू बनाउण दा उस फिल्म दा म्यूजिक तैयार करन दा नहीं मिलिया बट उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये मेहनत अगे चल के उन्होंने उन्हां दी जिंदगी दे विच रंग लियाई क्योंकि उस तो बाद उन्होंने छोटे नवाब मिली छोटे नवाब तो बाद छोटे नवाब हिट हुई और उस तो बाद कदे भी उन्होंने उन्होंने कम मंगना नहीं पिया कम आप चल के उन्हें तक आया क्योंकि उन्होंने प्रतिभा उन्होंने टैलेंट उन्होंने क्रिएटिविटी और उन्होंने सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक साज एवरीथिंग वॉज परफेक्ट और इस करके पंचम दा ने अपने जड़े भी गाने तैयार किया और हर रंग पाने की कोशिश की और कोशिश की कि गाना किवें डिफरेंट होवे किवें लोगों के दिलों तक पहुँचे और दिलों टुंबे और उन्हों का हर एक गाना दिल तक पहुँचता और दिल ते आज भी राज करता है।

0: सनम तेरी कसम 107 एफएम रेनबो ते इस वेले तुसी हरीश दी आवाज सुन रहे हो और प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया। और फिल्मी दुनिया प्रोग्राम च असी गल कर रहे हैं आर डी बर्मन साहब दी पंचम दा दी। और पंचम दा जदों धुना बनाउंदे सी ना गाना पढ़दे सी तां पढ़दे पढ़दे ही मतलब दिमाग दे विच बोल थिरकन लग पैंदे सी, धुन बननी स्टार्ट हो जांदी सी, कुछ इदां दा जादू सी। और इसे करके रात नूं सौंदिया होया उन्होंने गाने दी धुन तैयार कीती सी, कांची ओ कांची रे ये गाना जड़ा है वो उन्होंने कहिंदे ने सौंदिया होया धुन तैयार कीती। और सवेरे उन्होंने लता मंगेशकर और प्रोड्यूसर दे नाल गल कीती, डायरेक्टर साहब दे नाल गल कीती और किशोर दा और लता जी नूं इस गाने नूं गाण दे लई चुनिया गया। ये उन्हों का मतलब हर टाइम 24/7 म्यूजिक चलता सी दिमाग दे विच। और एक बार गुलजार साहब अपनी फिल्म इजाजत का एक गाना लै गए और गाना पढ़िया तो पहली बार उन्होंने ये गल कही कि यार तुसी अखबार फड़ा दोगे और मैनू कहोगे गाना तैयार कर, ये तो कुछ इदा का लिखा होया, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है मेरा वो सामान लौटा दो, है ना, मतलब मैं यदा गाना किदा किवें बनावा धुन। ये अल्फाज सी उस वेले पंचम दा दे, बट गुलजार साहब कहते ये गाना नज़म लिखी है मैं तो गाना तो तैयार करना ही पैना, फिल्म का हिस्सा है इंपॉर्टेंट है सॉन्ग। बट उस वेले हाथ चो कागज़ फड़िया आशा जी ने और गुनगुनान लग पे और गुनगुनाहट सुनी बर्मन साहब ने और जो उन्होंने बोलिया ना सामान लौटा दो ता उस वेले उस चीज़ नू कैच कीता और सारे गाने नू पढ़ के पूरी धुन जिहड़ी है उस वेले तैयार कीती राहुल देव बर्मन ने। ए सी उन्हां दा कमाल, ए सी उन्हां दा जादू। और गल कीती उस गाने दी तां फिर वो गाना सुनना तो बनता ही है।
1: किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए।

पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। रूठ गए, नाराज हो गए, हाथ से अंगूठी उतारी, वापस कर दी, बाहों के कंगन उतारे और सात फेरों समेत लौटा दिए। लेकिन वो बाकी जेवर जो दिल में रख लिए उनका क्या होगा।

107 FM रेनबो ते असी फिल्मी दुनिया प्रोग्राम च गल कर रहे हां पंचम दादी और आज ही दे दिन उन्हां दा बर्थ होया 27 जून नू। और दोस्तों ये गाना उन्होंने ही तैयार किया सी, उन्हां दा म्यूजिक सी, उन्हां दी धुन सी, मतलब कोई भी गिनती नहीं की जा सकती उन्होंने गाने की, इन्निया कमाल दियां धुनां, इन्ने कमाल दा म्यूजिक दिता। बट उन्हां नू जिहड़ा अवार्ड मिलिया वो सनम तेरी कसम फिल्म दे गाने दे लई फिल्म फेयर अवार्ड मिलिया। उस तो पहला 12 फिल्मों दे विचों नॉमीनेट हो चुके सी पर अवार्ड नहीं सी मिलिया। उन्हां दे म्यूजिक तले बहुत सारे सिंगर्स नू नैशनल अवार्ड मिलिया बट उन्हां नू कदे नैशनल अवार्ड नहीं मिलिया। और 12 साल मतलब 12 फिल्मों दा म्यूजिक अल्टीमेट टॉप म्यूजिक देने तो बाद उन्हां नू जिहड़ा अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिलिया इन्नी देर बाद मुद्दतां बाद। इदां हुंदा है कि किसी शख्स दा की कहिंदे ने रुतबा शायद बाद च पता लगदा और उसकी मौजूदगी दौरान उहदी जिहड़ी जिहड़ा मुल पैणा चाहीदा वह शायद उस तरीके दा नहीं पैंदा। बट वो गाने उन्हां दा म्यूजिक साडे दे लई वह अज भी अवार्ड तो घट नहीं है। इन्नी मतलब तादाद दे विच लोग पूरे वर्ल्ड दे विच उन्हां दा म्यूजिक सुनते अज भी सुनते और हमेशा सुनते रहेंगे। अज असी उन्होंने याद किया 107 FM रेनबो हमारे साडे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया के जरिए और प्यार भरी श्रद्धांजलि उन्होंने दी और जिथे भी

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो सोमवार तक सेशेल्स दे तीन दिन दौरे ते ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि एमएसएमई खेतर देश की आर्थिकता नू मजबूत करन च महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात दे 14 शहरां च भारतीय पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अज युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम दे अगले पड़ा सूरमा मुहिम दी शुरुआत। नशा छड़ चुके नौजवान होरना लोकां नूं नशा छड़न च करनगे मदद। पंजाब दे राजपाल ते चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया नशियां दी दुरवरतों ते गैर कानूनी तस्करी नूं खत्म करन लई इक सांझी समाजिक लहर दा सद्दा दित्ता है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर च सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के एक होर नैटवर्क का पर्दाफाश करदिया चार मुलजमान गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने वाले खिलाफ विधी गई सख्त मुहिम तहत पंजाब पुलिस ने वाहनों से गैर कानूनी हूटर सायरन फ्लैशर ब्लैक फिल्मों की अण अधिकृत वरतों विरुद्ध 15 दिन की विशेष राजव्यापी मुहिम चलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। 3 जुलाई तो शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा लई तैयारियां तेज हो गईयां ने। भारत दे किदांबी श्रीकांत रौनक चौहान ते देविका सिहाग कैलिफोर्निया दे फुलरटन च यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दे सैमीफाइनल च पहुंच गए ने। ਇਸ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ।

1.7 FM रेनबो थे एक बार फिर तो हाजिर है हरीश और हमारा स्टार्ट हो चुका है तुहाडा फेवरेट वाला प्रोग्राम और सारियां चीज़ां जड़ियां ने वो मन पौंदियां होनियां चाहीदियां ने। असी जो सानू वधिया लगता है जो साढ़े दिल नू पौंदा है असी वो चीज़ खाने पाने जिथे दिल कहिंदा उत्थे जाने जो दिल कहिंदा वो करते हैं जो दिल कहिंदा उन्नू बुलाने ये सारिया चीज़ा ने यह जड़ियाँ दिल तो हो रही ने है कि नहीं। और कहिंदे ने कि जड़ी चीज़ दिल तो की जाए वो कदे भी गलत नहीं हो सकती पक्की गल है। और इश्क मुहब्बत भी जेकर दिल तो होवे किसी दे नाल लगाव भी जेकर दिल तो होवे ते ओ अल्टीमेट वाला हुंदा और सच्चे वाला हुंदा और इसलिए दिल बड़ा मारा सोहना है और बड़ा ही भोला भाला है और इस नूं बहकाया नहीं जा सकता और ना ही इनू बहकाना चाहिए और ना ही असी बहकावांगे क्योंकि दिल जो चाहता है वो असी पूरा कर दें क्योंकि प्रोग्राम है इस वेले दिल चाहता है और दिल चाहता है प्रोग्राम के जरिए तुहाडियां फरमाइशां पूरियां होणगियां। तुहाडा दिल इस वेले चाह रहा है कि फटाफट जिहड़े मैसेजिज तुसी भेजे ने वट्सअप मैसेजिज क्योंकि प्रोग्राम साडा जिस विच तुसी 9855 10 10 27 ये साडे वट्सअप नंबर ते मैसेज भेजदे हो बॉलीवुड एंड पॉलीवुड पंजाबी गाने सुनने दे लई और अपना फेवरेट ट्रैक लिख के मेरे तक पहुँचाने वट्सअप मैसेज करदे और मैं पढ़ के तुहाडे तक तुहाडा फेवरेट गाना सुना देना ईजी तरीका ईजी जरिया अपना ट्रैक सुनने का। और तुसी चाहुंदे हो थोड़ा फेवरेट ट्रैक मैं सुनावा तो छेती छेती 9855 10 10 27 नंबर से तुसी वट्सअप भेज सकते हो और मैं तुहानू तुहाडा फेवरेट ट्रैक सुनावांगा। नहीं यकीन तो मैसेज भेज के वेख लो महाराज पूरा जरूर होएगा तुहाडा अज जो दिल कह रहा है। फिलहाल इस वेले मैं अपनी पसंद का गाना लगा प्ले करन ते उस तो बाद वापस होना ते तुहाडे मैसेज तुहाडी वारी आउणी महाराज।

ये लड़की कुड़ी एथलीट है महाराज, दौड़दी बड़ी तेज आ, हथ कितों आनी है? ना ना ना महाराज, आ नहीं सकती हुण, एथलीट हथ आ सकती किसी दे? 1017 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है और प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो, दिल चाहता है। और इस वेले तुहाडे मैसेजेस पढ़े जा रहे ने महाराज, जो तुसीं मेरे तक पहुँचाए ने बड़े प्यार दे नाल, और प्यार दे नाल ही मैं पढ़ रहा दिल तों मैसेज पढ़ दिया। सत श्री अकाल, दिल चाहता है हरीश जी, बलविंदर सरां, गुणताज, रसनदीप, मनजिंदर सरां, पिंड मोरजन सिखा, हनुमानगढ़, फिल्म चांदनी, गीत दे बोल तेरे मेरे होठों पे, मीठे मीठे गीत मितवा मितवा गाना सुनना चाहते हैं, तो असी इन्हों जरूर सुनावे। चांदनी फिल्म का ये ट्रैक, तो आ जाओ फिर।

फिल्म का नाम छाया, गायक तलत महमूद और लता मंगेशकर जी, गीत के बोल इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ये गाना सुनना चाहते ने ते असी इन्हों एक गाना जरूर सुनावांगे महाराज। आ लो जी सुनाता जी, सुनो फिर।

से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। थैंक यू जी, ये मैसेज मेरे तक पहुँचे ने जी। नमस्कार वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोई भी गीत सुना दियो जी, ये कह रहे ने। ते आओ फिर फिलहाल, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, किशोर साहब की आवाज़ दे विच, पवित्र पापी फिल्म का एक गाना सुनदे हां सी।

वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। तुम साथ हो जब मेरे तो दुनिया को दिखा देंगे। महाराज आजकल थोड़ा जहा माहौल डिफरेंट हैगा, और जदों तुम साथ होते हो तो लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होता है। और इस करके हर एक इंसान कल्ला कल्ला रहना चाहुंदा है, बट कुछ इदां दे रिश्ते होंदे ने जिथे कट्ठे हो के ही गल बनदी है कि नहीं। और तुहाडे मैसेजेस मेरे तक कट्ठे हो के आ रहे ने जी। बिल्कुल, इत्थे भी कम कट्ठो कट्ठी होया पिया, और फटाफट तुहाडे सारयां दे मैसेजेस पढ़ रहा मैं, और चाहुंना कि सारे गाने मैं प्ले करां, बट सारे गाने असीं प्ले कर नहीं सकदे। और इस करके जिन्ने भी मेरे लिसनर्स दे ट्रैक्स प्ले हो रहे ने, और कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लैनी, कोशिश है कि सारे दे मैसेजेस पढ़े जान। मैसेज पढ़ते हैं जी। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रा, रोजी डिकेस्ट्रा, पर्ल डिकेस्ट्रा, विलिस डिकेस्ट्रा, कोई सोने के दिल वाला कोई, माया फिल्म का ट्रैक, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, या हमें कहते ने कि भी गीत शामिल कर लियो। थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, ये मेरे तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। पदम पुरुष जिला श्री गंगानगर राजस्थान, तो थैंक यू सो मच। और एक होर मैसेज आया जी, हरीश सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, कृपया शामिल करें, धन्यवाद, शुक्रिया जी। तुसी शामिल हो गए हो जी, थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए जी। आरजे को अगला मैसेज जी, आरजे को आदाब नमस्कार। एनी सॉन्ग धनौरी तेली वाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, शुक्रिया जी, शुक्रिया मैसेज मेरे तक पहुँचाने दे लई जी। और एक होर मैसेज है जी, करणवीर हाउस पूछो कैंचियाँ, बठिंडा पंजाब से, नमस्कार जी। नमस्कार, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, किसी भी गीत में कह रहे ने शामिल करो जी, थैंक यू। और मैसेजेस ते मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहे ने, ते फिलहाल असी फरमाइश पूरी करते हैं जी। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ च प्ले है, गाना प्ले है जी।

और शो ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਸ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨਮਸਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੇਗਵੰਸ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੂਰਤਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਗਾਉਂ ਰਮਸ਼ੇਰਾ ਜਾਖਰਾ मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे दिलवाले फिल्म का गाना सुनना है सुना देंगे जी थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए जी अगला मैसेज पढ़ दें आप सर प्रेम नमस्कार कोई भी गीत में शामिल करें नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदन लाल वर्मा मेरे तक मैसेज पहुँचा रहे ने जी सुखवीर सिंह कोमलप्रीत कौर रोशन प्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर एनी सोंग मेरे तक मैसेज इन्हों का पहुँचे जी एक होर मैसेज पढ़ दें पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से अनिल मोहन उषा मोहन ठिल्लू नायक मधु नायक धन्यवाद थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए और फिलहाल दिलवाले फिल्म का ट्रैक असी इंजॉय करते हैं आ जाओ

107 FM रेनबो थे, हरीश दी आवाज में सुन रहे हो। और कई लिसनर्स कह रहे हैं कि नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं महाराज, और टेंशन नहीं लानी। मैसेज मेरे कोड आया जी, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान, तो वेद मिड्डा अलका मिड्डा, धन्यवाद दिल से। हरीश भाई कहते ने कि कोई भी गीत नाराजगी, कहते जेकर गाना नहीं सुनाया तो मैं समझागा कि नाराजगी है, कोई कोई नाराजगी नहीं है जी। और थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने की, लिसनर्स के नाम का नाराजगी होनी है, थैंक यू सो मच। कोई नाराजगी नहीं है, मैसेज करो और कल थोड़ी फरमाइश जरूर पूरी होएगी महाराज। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मनी, काका बिट्टू, लाडी, मास्टर मून, जनक नगर जलंधर तो मैसेज भेज रहे ने जी। सर जी नमस्कार, गुलामी का गाना नहीं सुना सकता जी हूँ। सर जी नमस्कार, गुलामी का। हरीश सर नमस्कार, रशपाल कुमार जलंधर तो गुलामी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, बट इस टाइम टाइम अप हो गया जी। सत श्री अकाल। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो यशमीत यशु, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, कोई भी गीत सुना दियो जी कह रहे ने। ये मैसेजेस मेरे तक आए आज। आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर तो सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम, थैंक यू मैसेजेस मेरे तक पहुँचाउण दे लई। ते इस प्रोग्राम नूं इत्थे वाइंड अप करदे आं और वधदे आं अगे, क्योंकि थोड़ा मेरा सफ़र इस तरह अज रहेगा जी ठीक 11 बजे तक।

कुछ रिश्ते नाम से नहीं, नाम से महसूस ही नहीं होते। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, महसूस से, फील से जिंदा रहते हैं। वक्त के शोर में भी चुपचाप से खड़े रहते हैं। ना कोई वादा था, ना कोई कसमें निभानी थी, फिर भी जाने कैसे कुछ लोग अपने हो जाते हैं। यादों की भी अजीब दुनिया है ना, जो बीत जाता है बस वही रह जाता है, जो कहीं नहीं पाए वही दिल में गहराता चला जाता है, वही दिल में गहराता चला जाता है, और वही हमारे दिल में, हमारे आसपास, हमारी रूह में खुशबू की तरह समाते जाते हैं, समाते जाते हैं।

तुम्हारी याद कोई दस्तक नहीं देती, तुम्हारी याद कोई दस्तक नहीं देती, बस चुपचाप आकर बैठ जाती है, कभी किताबों के पन्नों में, कभी खिड़की से आती हुई धूप में। मैं बहुतों के बीच होता हूं, पर सुनता सिर्फ तुम्हारी ही आवाज हूं। तुम्हें पुकारता नहीं, क्योंकि डरता हूं कहीं याद भी जवाब मांगने लगे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर तुम्हें याद करने का तरीका नहीं बदला। आज भी वही खामोशी, वही बेचैनी, वही अधूरापन। बस अब उसे जीना आ गया है, तुम्हारे बिना जीना आ गया है, तुम्हारी याद के साथ। तुम्हारी याद, सिर्फ तुम्हारी याद।

पता है, कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन वो हमारे जीवन में इतना प्रेम भर जाते हैं, हमें इतना प्रेम दे जाते हैं कि हमेशा के लिए हम बदल जाते हैं। और तब समझ आता है, प्रेम का अंत बिछड़ना नहीं होता। प्रेम का अंत तब होता है जब दिल से दुआएं खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे के लिए। चाहे जहां भी रहें, एक दूसरे से चाहे बिछड़ जाएं, लेकिन एक दूसरे से मिली मोहब्बत, वो प्यार कभी नहीं भूलता, कभी नहीं दिल से जुदा होता, और ना ही होना चाहिए।

रास्ते तुमने चुपचाप छोड़ दिए थे, वे कहीं और जाकर फूल बन गए। और जो लोग तुम्हारी कहानी में अधूरे रह गए, वे किसी और की कहानी में पूरी तरह से लिख दिए गए। तब तुम्हें लगेगा जैसे समय ने तुम्हें, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ही संभावनाओं को किसी और के जीवन में जी लिया हो, और तुम बस देखते रह जाओगे अपनी ही कल्पना को किसी और

कौन कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ लगाव खत्म हो जाता है। मोहब्बत तो जितनी पुरानी होती है उतनी और ज्यादा बढ़ती जाती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं ये मोहब्बत इसी तरह से ताउम्र करता रहूंगा, सिर्फ तुम्ही से, सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से। आज तक किसी और को देखा नहीं है और ना ही देखने की चाहत है। तुम मेरे दिल में थी और मेरे दिल में ही रहोगी, तुम्हारी याद की तरह जो हर रोज मेरे पास आती है दिन ढले।

कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए। हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए। गहरों से क्या गिला जब हमारे अपने ही बदल गए। हाँ तुमसे तो गिला हो ही सकता है मुझे, और ये बात भी सत्य है कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि मुझसे इश्क करो, तुमने भी नहीं कहा था। ये इश्क, ये मोहब्बत ना जाने कैसी चीज है, अपने आप हो जाती है और फिर हमेशा साथ रहती है, हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास है ना।

तू लाख बुरा कहता है मुझे, मगर मैंने तुझे बदनाम नहीं किया। लोग पूछते रह गए मेरी उदासी की वजह, मगर मैंने तेरा नाम नहीं लिया। तो लौट कर कभी आया ही नहीं मेरे पास, मैंने भी तुम्हारा इंतजार नहीं किया। तो आखिरी शख्स थी जिसे मैंने चाहा था। तेरे बाद मैंने किसी और से प्यार नहीं किया, नहीं, मैंने किसी और को नहीं चाहा तेरे सिवा।

मैं अक्सर ये सोचता हूं, अगर इश्क ना होता तो क्या होता। ये गुलाब, ये खत, ये तस्वीरों का क्या क्या होता और इनकी क्या कीमत होती। ये गुलाब बस एक फूल होता, ये खत सिर्फ एक कागज होते, ये तस्वीरें बेजान होती। मैं सोचता हूं अगर ये इश्क ना होता तो क्या होता। ना होता बारिशों का इंतजार, ना होता बातों का इकरार, ना आंखों से बातें होती और ना ही बिरहा में बिदाई गई वो रातें होती। लाल रंग भी फिर सिर्फ एक रंग होता। मैं सोचता हूं अगर ये इश्क ना होता तो क्या होता। क्या आपको भी यही लगता है ना?

मेरे एकांत में वो है, पर मेरी एकाकी का हिस्सा भी नहीं है। वो नूर है जिससे रोशन है हर रात, और मैं वो सांझ जिसे अंधेरा ही नसीब हुआ। किस्मत उनकी उनसे पूछो जिनके लिए एक झलक ही सुकून की बारिश जैसी है। राहों में ही मिले और राहों में ही बिखर गए। ना उसकी दुनिया में कुछ नया सा लगता है और ना मेरे नसीब में वो पल आए, ना मेरे अपनों में, ना मैं भी उसके रिश्तों में कहीं हूं। मेरे एकांत में वो है, पर मेरी एकाकी का हिस्सा नहीं। मैं तो उसे यही कहता हूं अब। 107 एफएम रेनबो थे तुहाड़ा ते मेरा साथ, अज दा इत्थों तक ही सी। जिंदगी दे सफर च तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात होएगी, तद तक लई बाय बाय, टेक केयर। इस रात दा ए अखीरला ट्रैक तुहाडी पेश खिदमत है, ब्यूटीफुल ट्रैक, आओ सुनते हैं।